मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि तदनुसार 21 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के बाद FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। आज का चिंतन, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह लगातार कोशिश और अत्यधिक परिश्रम चाहती है और सही दिशा में किए गए परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ये था आज का चिंतन और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमारी अच्छी और सात्विक बुद्धि के द्वारा ही जीवन में हम खुशी और सुख शांति का अनुभव कर पाते हैं। अपने मन में बसंत लाने का और बुद्धि की जड़ता को समाप्त करने का एक ही साधन है, और वह है किसी भी रूप में उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें।

0: प्रार्थना का स्वरूप है जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के अनासक्त भाव से, बुद्धि और आत्मा की निर्मलता से, सेवा भाव से, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना रखते हुए भगवान को भजता है, प्रातःकाल उसका नाम सिमरन करता है।
1: राम राम बोलो।

मन में अच्छे विचारों का आश्रय लेकर जब हम परहित में मगन होकर मानसिक शांति का अनुभव करते हैं तो मन से बुरी भावनाएं स्वयं ही दूर होने लगती हैं और यही प्रार्थना का सच्चा स्वरूप भी है।

जीवन में सुख पाने के दो ही उपाय हैं, मन में शुभ भावना और दूसरी है प्रभु की प्रार्थना। जो व्यक्ति ईश्वर का शुभ चिंतन करते हुए शुभ कार्यों में अपना जीवन यापन करता है, वही मानसिक शांति को प्राप्त करता है और ये प्रार्थना का एक स्वरूप है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो भक्त अंत समय में मेरे नाम को जपता हुआ देह को त्यागता है, वह परम श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

गीता का ज्ञान भी हमें यही स्मरण करवाता है कि जो हो रहा है उसी में हित है, इससे बढ़कर शुभ ज्ञान नहीं। जो कुछ मिला बहुत प्रभु करुणा, रख तृष्णा दुख खान नहीं। यही समर्पण भाव भक्ति है, प्रभु का गलत विधान नहीं। छूट जाए सब कुछ पर छूटे रसना से हरि नाम नहीं।

प्रभु हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ संपन्न करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

0: वाणी जयराम और ए हरिहरन के स्वर में आपने सुना श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से लीजिए सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे धान की नर्सरी तैयार करने के बारे में। भाई, धान हमारी एक मुख्य फसल है और बहुत बड़े क्षेत्र में धान की खेती करी जा है। इसमें देखो, जितनी अच्छी हमारी जो नर्सरी तैयार होगी उतना ही बढ़िया आगे हमें इसकी पैदावार मिलेगी। उसमें देखो, सबसे पहली बात तो हम ये करें कि भाई जो नर्सरी बोने का समय है वो कौन सा है। इसमें जो कम अवधि वाली बोनी किस्में हैं उनकी जो बिजाई है हम 15 मई से लेकर और 30 जून तक कर सकते हैं, और जो मध्यम अवधि वाली किस्म हैं उनकी बिजाई हम 15 मई से लेकर और 30 मई के बीच में हमने उसकी करनी पड़ेगी। इसके लिए हम देखो 10 किलो बीज यदि ले रहे हैं तो 10 किलो का हिसाब तो हम बात करें तो उसमें 1 किलो नमक ले लें हम और 10 लीटर पानी ले लें, और फिर उस बीज को धीरे धीरे उसमें डुबो दें और अड़के से हाथ से उसको हिलाते रहें, और जो रोगग्रस्त बीज हैं उनको हम ऊपर तैरने जब वो लग जाएं उनको निकाल दें, चाहे जैसे चाय छानने वाली जो छलनी हो उससे भी हम निकाल सकते हैं, जिससे जो खराब बीज है वो ऊपर तैर जाए और उसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो बाहरी बीज है और बहुत अच्छा बीज है स्वच्छ पानी में उसको फिर हमने 3 से 4 बार उसको धो देना है जो बाकी नीचे बैठ गया है, और उसके अंदर ये ध्यान रखना है भाई जो नमक का असर है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसमें इस बात का भी भाइयों हम ध्यान दें कि भाई जो फफूंद वाली दवाई है उन पर हम जो बीज को उपचारित कर दें, और इसमें जैसे हम बात करें कि 10 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये दवाई ले लें और 10 लीटर पानी ले लें। इसमें 10-12 किलो बीज को हम लगभग पूरे के पूरे कोशिश करें कि भी हम उसको 24 घंटे तक भिगो कर रखें, और फिर जब वो उपचारित बीज जो हमने बाहर निकाला है उसको हम कुछ समय के लिए एक बोरी के नीचे दबा के रख दें जहाँ पर हवा ना जावे, और उसमें जब वो अंकुरित हो जाए उस समय पे हमने इसकी बिजाई करनी है। इसमें एक बात का भाई हमने ध्यान देखो जरूर रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमने नर्सरी लगानी है उस जगह पे पहले हम 10-12 गाड़ी गोबर की अच्छी गली सड़ी हुई खाद होनी चाहिए वो डाल दें। इसमें 22 किलो यूरिया, 65 किलो SSP और 10 किलो जिंक सल्फेट, ये जो मात्रा बताई गई है ये 1 किलो की पौध के लिए बताई गई है, और फिर बाद में जैसे ही हम बाद में बिजाई कर दें तो 2 सप्ताह बाद हमने 22 किलो यूरिया 1 किलो की नर्सरी खातिर काफ़ी रवे है। इस बात का ध्यान दें भाई, इसमें हम ज़्यादा जो खाद है यूरिया वो ना लगाएं। और एक बात भाइयों के लिए ये भी ज़रूरी है कि भाई जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं उसमें खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 से 3 दिन के बीच में 600 ग्राम जो 100 फीट दवाई आव है प्रोटी लाक्लोर दवाई है ये 30 सीसी ताकत की, इसको हम 1 किलो के हिसाब से 60 किलोग्राम जो सूखी रेत है उसमें मिला लें, या फिर 1.25 लीटर के आसपास ब्यूटाक्लोर दवाई है ये हम डाल सकते हैं, या फिर थायोबेक्रान दवाई है या फिर पेंडीमेथिलीन दवाई है, इनको भी हम 60 किलो सूखी रेती में मिला के। और
0: ये थी कृषि की बातें, आपने सुनी आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अंतिमं प्रचरणं सफलतया संपाद्य

0: इटलीदेशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटलीदेशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्त्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतङ्कवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy. marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force or BSF for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. At Nobana yesterday, Chief Minister Shubhendu Adhikari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrance. President of Cyprus Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. President Christodoulidis was received by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis at the Mumbai airport. He was also accorded a ceremonial welcome. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that he is looking forward to celebrating America's 250th birthday with partners in India. In a video message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and U.S. is the world's oldest. So the U.S. looks forward to celebrating it together. U.S. Embassy in India also shared the video. The U.S. will commemorate and celebrate the 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence on 4th of July. Mr. Rubio will be on a four-day visit to India from the 23rd of this month. This will be his first visit to India. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground Eden Gardens last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest, that is 45 runs, while Robman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
4: आप और हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र के साथ, जो आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रम आप डीटीएच और आकाशवाणी की ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। प्रातः के 7:10 हो चले हैं। अब समय है आपको केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

आज रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइट्स, दोनों ही कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर साप्ताहिक समीक्षा सुनिएगा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर।

प्रातः 7:15 पर सुनेगा अंग्रेजी वार्ता, विषय होगा उदय भानु हंस द ब्राइट सन ऑफ लिटरेचर। वार्ताकार होंगे श्री करतार सिंह जाखड़। हमारी दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे प्रातः 7:25 पर।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर मेरी पसंद कार्यक्रम प्रसारित होगा। अलावा इसके आप सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा विश्व संवाद व विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता। वार्ताकार होंगी निष्ठा बंसल।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज चर्चा का विषय रहेगा बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजपाल के साथ बातचीत का विषय होगा उर्वरकों का समुचित प्रबंधन। अलावा इसके चर्चा रहेगी भंडारण करते समय सावधानियां। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 टीकाकरण कब और क्यों और कैसे, इस विषय पर बातचीत सुनिएगा डॉक्टर परितेव सिंह के साथ। इसके अलावा चर्चा रहेगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विषय पर।

नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। उम्मीद है आप सभी इस गर्म मौसम में अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और दिन भर के कामों में लगे होंगे, साथ ही साथ बनाए होंगे रेडियो का भी, क्योंकि हम चले आते हैं आपसे मिलने और सिर्फ आपसे मिलने। उम्मीद है आप भी इंतज़ार करते होंगे कि आज सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम किस विषय पर बात करेंगे। श्रोताओं, कई विषय हैं आज भी हमारे पास, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मना रहे हैं, एक और दिन भी मना रहे हैं और समय बचा तो बात करेंगे मौसम की। भाई लाजमी है, इतनी गर्मी है तो थोड़ी सी मौसम की बात तो देखिए करनी ही चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय की। श्रोताओ, हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और यह दिन सिर्फ चाय के स्वाद का नहीं बल्कि उससे जुड़े एहसास का भी एक उत्सव है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मान्यता दी थी ताकि दुनिया को चाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। चाय दुनिया के सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। सुबह की शुरुआत हो, दफ्तर का छोटा सा विराम हो, बारिश के मौसम में दोस्तों के साथ बैठना, एक कप चाय हर मौके को खास बना देती है। चाय सिर्फ थकान ही दूर नहीं करती बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। और चाय की कहानी शुरू होती है चीन से। माना जाता है कि चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। वहाँ चाय पीना सिर्फ आदत नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। चीन में चाय परोसने की पारंपरिक विधि को बहुत खास माना जाता है और चाय बनाने और परोसने का तरीका वहाँ शांति, सम्मान और अनुशासन से जुड़ा होता है। धीरे धीरे चाय चीन से दुनिया के कई देशों तक पहुँच गई और हर जगह इसका अपना अंदाज बन गया। चाय का और भारत का रिश्ता कैसा है? आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। घर हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़क किनारे की दुकान हो, दफ्तर के कैंटीन हो या गांव की चौपाल, चाय हर जगह मिल जाती है। मसाले वाली चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय, कड़क चाय, हर किसी की अपनी पसंद होती है। और श्रोताओं, कौन ऐसा है जो चाय पीना पसंद नहीं करता? भाई हमें तो चाय बहुत अच्छी लगती है। भारत में अक्सर बातचीत की शुरुआत चाय ही से तो होती है। राजनीति हो, क्रिकेट हो, काम हो, परिवार की बातें हो, चलो चाय पीते हैं, कहते ही माहौल हल्का हो जाता है और कई बार एक कप चाय और दोस्तों की बातें दिन भर की चिंता को कम कर देती हैं। सच कहें तो भारत में चाय सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हमारे यहाँ चाय पर मिलना सिर्फ चाय पीना नहीं होता बल्कि साथ बैठकर समय बिताना भी होता है। यही वजह है कि चाय लोगों को करीब लाने का काम करती है। भारत दुनिया में सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में शामिल है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। खास तौर पर दार्जिलिंग की चाय को लोग चाय की शाही पहचान तक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सिर्फ चाय का उत्सव नहीं है बल्कि उन लाखों किसानों और मजदूरों को सम्मान देने का दिन भी है जो चाय को खेतों से हमारे कप तक पहुंचाते हैं। उनकी मेहनत की वजह से ही हर सुबह चाय की खुशबू हमारे दिन की शुरुआत बनती है। दुनिया के अलग अलग देशों में चाय पीने का तरीका भी अलग है। जापान में हरी चाय पी जाती है और पारंपरिक चाय समारोह काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्रिटेन में दोपहर की चाय पीने की परंपरा है, जहां चाय के साथ केक और हल्के नाश्ते का प्रयोग वहां के बाशिंदे करते हैं। तुर्की में मेहमानों को छोटे कांच के गिलास में चाय दी जाती है, वहीं मोरक्को में पुदीने वाली मीठी चाय बहुत लोकप्रिय है। अलग अलग तरीकों के बावजूद हर जगह चाय लोगों को साथ लाने का काम करती है। आज की तेज जिंदगी में चाय एक छोटे से आराम की तरह है। यह हमें कुछ देर रुकने, अपनों से बात करने और खुद को थोड़ा समय देने की याद दिलाती है। खुशी हो, तनाव हो, ठंड हो, बारिश हो, चाय हर माहौल में फिट बैठती है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक एहसास है।

श्रोताओ, गीत आपने सुना और गीत से पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में और थोड़ी सी बात चाय के बारे में और कर लेते हैं। श्रोताओ, चाय जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में, बीमारी जो है उनको ठीक करने में एक दवा का काम भी करती है। और दवा का काम वो इस तरीके से करती है कि जब हम चाय को पीते हैं तो उसमें काली मिर्च का पाउडर है, अदरक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें मिलाते हैं और इस तरह से चाय एक दवा का काम भी करती है। कई औषधीय गुण भी चाय में मौजूद रहते हैं जो हृदय संबंधी समस्याओं, मधुमेह को नियंत्रित करने और प्रदूषण के कारण फेफड़ों को एंटीऑक्सीडेंट से बचाने जैसी कुछ बीमारियों से भी लोगों को ठीक करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा चाय उत्पादन और निर्यात से रोजगार, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी मदद मिलती है। सतत विकास लक्ष्य कार्यक्रम द्वारा चाय को एक आवश्यक पेय माना गया है। भारत में पहले हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, लेकिन दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले के बाद अब हर साल 21 मई को, यानी आज के दिन, इस दिवस को मनाया जाने लगा। यह सुगंधित पेय पदार्थ भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। वर्तमान में चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता देश है। भारत में चाय बोर्ड द्वारा साल 2007 में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं ने भारत में उत्पादित कुल चाय का 80% उपभोग स्वयं ही कर लिया था, यानी कि हम 20% ही बाहर भेजते हैं और 80% चाय का प्रयोग हमारे देश में ही हो जाता है। इससे आप बिल्कुल ये जान गए होंगे कि हम भारतीय चाय पीने के कितने शौकीन हैं। पानी के बाद चाय दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय पदार्थ है और असम भारत का पहला राज्य था जहां चाय के बागान लगाए गए थे। इससे पहले भारत में लोग चाय के पौधे चीन से मंगवाते थे। भारत चाय के शौकीनों का देश है। भारत में दार्जिलिंग चाय, असम चाय, नीलगिरी चाय को लोग बेहद पसंद करते हैं। आज भारत चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, केन्या, इंडोनेशिया, मलेशिया, मलावी, भारत, युगांडा और तंजानिया 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा चाय दिवस का आयोजन अब 21 मई को किया जाने लगा है, क्योंकि मई के महीने में ज्यादातर देशों में चाय का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो श्रोताओ, चाय के बारे में बहुत सारी बात हमने कर ली है और अब एक गीत सुनना तो देखिए बनता ही है।

और श्रोताओ, इस गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और दिन विशेष पर बात करते हैं। आज हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के मार्ग से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है आज और उन्हीं की याद में हर साल इस दिन को मनाया जाता है। श्रोताओं, इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारें, उनके सार्वजनिक उपक्रम और सभी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान सभी कर्मचारी, विद्यार्थी, अधिकारी आतंकवाद और हिंसा का डटकर सामना करने तथा शांति व सद्भाव बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक कार्यालयों में इस दिन ये संकल्प लिया जाता है आतंकवाद के विरोध में। आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना, शांति, मानवता और एकता का संदेश देना, युवाओं को हिंसा और चरम पंथ के रास्ते से दूर करना, राष्ट्रीय अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाना, ये सब उद्देश्य हैं आज के इस दिन को मनाने के। श्रोताओ, आतंकवाद एक ऐसा कृत्य है जिसमें हिंसा या भय का उपयोग करके किसी खास राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यह न केवल मानव जीवन के लिए खतरा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और आप देख ही रहे होंगे कि आतंकवाद से देश का ही क्या, पूरे संसार का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो अछूता हो। पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं हमें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलती रहती हैं। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले या बम विस्फोट में हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई 1992 को मनाया गया था। श्रोताओ, ये दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद से कोई भी समस्या हल नहीं होती। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। आतंकवाद दुनिया भर में हर समाज को प्रभावित करता है। शांति और स्थिरता के लिए, गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को, समुदायों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने और एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान करता है। देश के हर हिस्से में इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने के लिए नागरिकों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ाया जा सके।

ये शहर है अमन का। श्रोताओं, हम सभी यही चाहते हैं कि शहर में, देश में, विश्व में, हर हिस्से में सिर्फ शांति हो और आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और विषय पर बात करते हैं, और वो विषय है सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व संवाद और विकास दिवस। संवाद यानी बातचीत करना, और बातचीत दो देशों के बीच, पूरे संसार के बीच, कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए। आज चारों तरफ जब युद्ध जारी है, और ऐसे में ज़रूरी हो जाती है कि आपस में दो देश मिलकर बात करें। इससे विकास भी होगा, और जो सांस्कृतिक विविधता हर देश के बीच है, उसके लिए भी युवाओं को भी ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे देशों में भेजा जाता है, ताकि सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान हो सके और युवा उस देश की संस्कृति से रूबरू हो सके। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धि को उजागर करना, शांति तथा सतत विकास के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद के यानी बातचीत के महत्व को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2001 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विविधता पर अपनाई गई सार्वभौमिक घोषणा के बाद 2002 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की विविधता को अपनाकर ही समाज में शांति, समावेशिता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक संदर्भ में बात करें तो यह तिथि छात्रों को हमारे समाज में सह अस्तित्व रखने और विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूक करने का अवसर प्रदान करती है। 21 मई को संवाद और विकास हेतु सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस हम मना रहे हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य यही कि विविध संस्कृतियों की समृद्धि को मान्यता देना और लोगों के बीच संवाद, सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करना है। इसका लक्ष्य विकास, रचनात्मकता और आपसी समझ के प्रेरक बल के रूप में सांस्कृतिक विविधता के महत्व को उजागर करना है। इससे छात्रों को समाज में मौजूद विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली को समझने में और सराहने में मदद मिलती है, और यह जागरूकता आपसी सम्मान को और पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देती है। अंतर सांस्कृतिक संवाद विभिन्न संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे पूर्वाग्रह यानी कि कोई भी हम एक विचार किसी भी संस्कृति के बारे में, किसी के देश के बारे में बना लेते हैं, उससे संघर्ष होते हैं, और इनको कम करने में इससे मदद मिलती है। यह व्यक्तियों और समुदाय के बीच सहयोग और सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार यह ऐसे नागरिकों को तैयार करने में सहायक होता है जो जागरूक हों, जो सहिष्णु हों और जो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में सक्षम हों। संस्कृति को सामाजिक, आर्थिक और रचनात्मक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में पहचानना हमें यह समझने में मदद करता है कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां समुदायों के कल्याण और समाज के विकास में किस प्रकार योगदान देती हैं, युवाओं और कलाकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकता मजबूत होती है। यह लोगों के बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध करती है, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है। इस प्रकार गतिशील समाज में और उसके निर्माण में रणनीतिक महत्व स्पष्ट देखा जा सकता है। तो श्रोताओं, आप और हम सहिष्णु बने, देश में ही नहीं विदेशों की भी जो संस्कृति है उसको सीखें, उसको बढ़ावा दें और उसके प्रति सहन शक्ति को अपने

अपने भीतर अनुभूत करें, अपने भीतर पैदा करें, ताकि समाज में और सभी देशों के बीच समूचे विश्व में शांति की स्थापना हो सके।

श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी पहले किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन यदि कोई देश आक्रमण करता है तो फिर उसका जवाब देने में भी भारत कभी पीछे नहीं रहता।

बिल्कुल, हमारा भारत देश ऐसा देश है जो सर्वत्र शांति चाहता है और हर देश के साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें, यही भारत की हमेशा कोशिश रहती है। और श्रोताओं, बात करें मौसम की तो गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करके चेताया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से कम निकलें और आने वाले 25 मई तक गर्मी से, भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। प्यास न लगे तब भी पानी पीते रहें, घर की बनी लस्सी नींबू पानी का सेवन करते रहें और सिर को ढककर ही बाहर निकलें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी से बचे रहेंगे। और अब इन्हीं सब शब्दों, बातों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, अपना ख्याल रखिए और ख्याल रखिए उनका भी जो आपके अपने हैं। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए, तब तक आनंद लेते रहिए इस गीत का भी।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
9: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
3: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
10: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
3: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम

0: के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक, भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है
2: More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
2: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said, "The initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries." She said stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संतोष नागिया को। अगली रचना से पहले सुन लेते हैं कुछ संदेश भी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज हमारी कलाकार थी संतोष नागिया। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बज चुके हैं और ये समय है फरमाइशी फिल्म संगीत के फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक का, और कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। शो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन नए सुनने वालों के लिए नंबर एक बार फिर से दोहराएंगे, 255-440, 255-447 और 255-448। तीन फोन लाइंस काम कर रही हैं और इनसे पहले आप लगाएं रोहतक एसटीडी कोड 01262। किसी भी एक नंबर पर आप ट्राई करें और हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाने की। पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, पलट कर देख लेना जब सदा दिल की सुनाई दे, मेरी आवाज में शायद मेरा चेहरा दिखाई दे। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। और श्रोताओं, देखते हैं पहले कॉलर हम तक कौन पहुंचे हैं, जानते हैं उनको और पूछते हैं उनकी पसंद का गीत कौन सा है। हेलो, जय माता दी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी मैडम, मेरा नाम पूरन वर्मा है। हाँ जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है बेटा और गाने के बोले सैया जी से, वही जो दिल की बात ये गाना।
0: हाँ, जरूर सुनवा देंगे। मौसम तो बहुत गर्म होगा राजस्थान में।
1: हाँ जी मैडम, मौसम गर्म है पर अभी तो ठंडी हवा चल रही है, पर बारह एक बाद में गर्म हवा चलेगी, अभी तो बढ़िया हवा चल रही है मैडम ठंडी।
0: चलिए अच्छी बात है, जब तक ठंडी हवा है उसका आनंद लीजिए और गर्मी से अपना बचाव रखिए।
1: आपको उधर कैसा हो रहा है मौसम?
0: बहुत गर्म है और रोहतक तो लगातार दो दिन जो है पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर गर्म शहर रहा है पिछले दो दिन, मंगलवार और बुधवार को 46.9 डिग्री सेल्सियस तक रोहतक का तापमान पहुँच गया था। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान रखिए अपना और हम ध्यान रखते हैं आपकी पसंद का, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आपको। शुक्रिया,
1: थैंक यू मैडम।

0: और हमारे अगले जो श्रोता हैं वो लाइन पर आ चुके हैं, देखते हैं और जानते हैं वो कहाँ से हैं और उनकी पसंद क्या है। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है, परिचय दीजिएगा अपना।
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नंद किशोर बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी नंद किशोर जी, बहुत
1: हाँ
0: स्वागत
1: जी,
0: है, नमस्कार।
1: गांधी कैंप रोहतक से बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: कौन सा
1: जी,
0: गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना है जी इसका, क्या नाम है, यादगार फिल्म का, एक तारा बोल रहे। हाँ
0: और साधना फिल्म का गीत भी आपने सुनने के लिए बोला था
1: जी,
0: ऑफलाइन।
1: हाँ जी, दो दो बताए थे आपसे, एक तो क्या नाम है, साधना फिल्म का है जी, क्या
0: हाँ जी, साधना का
1: नाम है,
0: हमने आपके लिए निकाल लिया है।
1: साधना का सुना दो जी।
0: हाँ जी
1: औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बजा दिया,
0: जी,
1: जो
0: लगातार
1: ठीक
0: सुनते
1: है।
0: हैं कार्यक्रम।
1: हाँ जी, लगातार सुनते हैं, कई दफा तो आपके प्रोग्राम रेडियो पे तो सुनाई देते नहीं, मैं तो टीवी पे फिल्म फ्री का आता है ना टीवी
0: डीटीएच के माध्यम
1: पे,
0: से,
1: हाँ जी टीवी पे देख के सुनता हूँ जी, ठीक
0: चलिए अच्छी बात है।
1: है। हाँ जी, बाकी
0: हाँ
1: आप उठाते ही नहीं, कई कई साल तो हो जाते हैं, नहीं लगते लगाते।
0: चलिए, आज आपका फोन कॉल जो है, नंबर आपका आया और हमें भी अच्छा
1: शुक्रिया
0: लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। सुनवा देते हैं
1: जी,
0: आपको आपकी पसंद का गीत। फोन करने
1: बहुत
0: के लिए
1: बहुत
0: धन्यवाद, शुक्रिया
1: मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी,
1: थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: बहुत ही भावुक और रियलिस्टिक से टाइप का गीत, और ये गीत समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके शोषण और पितृसत्तात्मक सोच पर एक करारा प्रहार है। महान शायर, हिंदी फिल्मों के और गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस साहसिक गीत को लिखा था, और 1958 में फिल्म आई थी साधना, उससे ये गीत था। और अब देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन सा गीत पसंद करते हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो रोहतक।
0: हाँ जी, हेलो रोहतक, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार उषा मलिक जी।
0: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद जी।
0: जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ जी उषा मलिक जी, आज मुझे गीत नागिन फिल्म का सुनवा दो।
0: हाँ जी, जरूर सुनवाएंगे। कौन सा?
1: ये पुरानी नागिन फिल्म है, मंडोले मेरा तंडोले, ये गीत सुनने को जी कर रहा है जी।
0: जी,
1: और उषा मलिक जी, एक फरमाइश आपने मेरी पूरी कर दी सुबह सवेरे में।
0: अच्छा, कौन सा गीत?
1: वो जो आखिर में सुनवा था सिकंदर आजम फिल्म का।
0: हाँ जी,
1: पहले मैंने वो सोचा था, फिर वो आपने खुद ही सुनवा दिया, तो बहुत अच्छा, आप कई बार मेरी फरमाइश वैसे ही पूरी कर देती हो
0: जी। अच्छा लगता है, और यही सोचकर हम गीत चुनते हैं कि हमारे सुनने वालों को वो अच्छे लगे, है ना।
1: हाँ जी, जो आप पुराने गीत सुनाते हैं ना जी कार्यक्रम में, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं
0: जी। शुक्रिया आपका। हाँ,
1: पुराने गीत मुझे पसंद है जी उषा मलिक जी।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं पुराने ही सुनता हूँ।
0: पुराने गीत हमारे बहुत सारे, जो चाहे युवा श्रोता हो चाहे अधेड़ उम्र के हो, सभी को बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी, पुराने गीतों की तो बात ही अलग है जी उषा मलिक जी।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं अब आपको पसंद का आपकी गीत नागिन फिल्म से।
1: हाँ जी, सुनवा दो जी।
0: हाँ जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, अगले गीत से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले श्रोता से बात की कोशिश करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए।
1: मैं मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव तहसील कुमरा जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: हाँ धाकड़ जी, कैसे हैं?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे।
1: जी जी मैम, आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, मैंने कहा कॉल ही मिला लूँ, कॉल भी लग गई।
0: हाँ बहुत अच्छा किया और आपकी कॉल लगी, ये तो और भी अच्छा हो गया है ना।
1: जी मैम जी, समय समय पर कॉल करते हैं हम आकाशवाणी रोहतक,
0: करते रहें, बिल्कुल जुड़े रहें आकाशवाणी के साथ।
1: जी जी मैम, और आपके प्रोग्राम भी एक नंबर अच्छे लगते हैं।
0: जी शुक्रिया आपका सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। आज कौन सा आपकी पसंद का गीत सुनवा दें?
1: आज मुझे सुनवा देना मोहरा पलम का गीत है, ना कजरे की दार ना मोतियों की हार।
0: हाँ जरूर सुनवा देंगे।
1: और कुछ मित्र हैं मेरे साथ में,
0: हाँ जी नाम बताइए।
1: नरेश प्रजापति हैं, और प्रेम सिंह ससौदिया हैं, सुनील साहू जी हैं, अमर सिंह भिलाला जी हैं,
0: ठीक है, सभी
1: और
0: को डेडिकेट
1: अमर सिंह
0: करेंगे।
1: साहू जी हैं।
0: जी
1: जी
0: तो सभी मिलकर सुनिए, और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: जी
0: शुक्रिया।

0: तुम्हारी सादगी ने ही जीता है दिल हमारा, वरना चेहरे तो इस जहां में और भी हसीन हैं। आप सुन रहे थे इसी तरह का भाव लिए गीत मोहरा फिल्म से, और देखते हैं अगले श्रोता के साथ कौन सा गीत कार्यक्रम में शामिल होता है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी स्वागत है, हेलो रोहतक कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: हाँ जी राकेश स्वागत है आपका, आप तो अक्सर कार्यक्रमों में फोन कॉल करते रहते हैं।
1: जी जी, खासकर जो आपका एक आता है ग्राम संसार, उसमें भी मैं जुड़ता रहता हूँ, और कभी कभी तो मौका मिलता तो श्रोता मंच भी आता आपके यहाँ से, वो भी सुनता हूँ मैं, उससे भी जुड़ता रहता हूँ।
0: चलिए अच्छी बात है, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे दिल का रिश्ता मूवी का गाना सुनना है, दिल चुरा।
0: हाँ सुनवा देते हैं।
1: जी जी सुनवा दीजिएगा।
0: सुनिएगा, धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: मधुर मधुर से गीतों का सिलसिला चल रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हेलो रोहतक, जिसमें आप फ़ोन कॉल करते हैं और ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है और हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाने की। और कार्यक्रम में आपके साथ है आपके साथी उषा मलिक, देखते हैं, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में अगले साथी का। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं सोनिका इशार से बात कर रही हूँ।
0: हाँ सोनिका, कैसी हैं?
1: ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हो मैडम?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और पहली आवाज़ गूंजी कोई महिला स्वर कार्यक्रम में, और अच्छा लग रहा है हमें।
1: जी, काफ़ी देर से लगा रही थी, लग नहीं रहा था, और कई दिन में लगा मैडम।
0: चलिए, ये भी अच्छी बात है कि कई दिन में।
1: और हाँ, वो जो आपका वो रेडियो का स्थापना दिवस वाला प्रोग्राम था, उसमें मिलाने की कोशिश की, तब मिला ही नहीं मैंने।
0: अच्छा, सुबह 9 से 10 बजे तक जो किया था।
1: हाँ जी, लाइव प्रोग्राम था जो। हाँ, शुक्रवार को था शायद।
0: हाँ, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: जी, कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम आपके, ज्यादातर तो फोन इन कार्यक्रम ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उसमें बातचीत हो जाती है ना, अलग अलग श्रोताओं से आपको सुनने को मिलती है।
1: जी मैडम,
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: जी, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, इसमें गीत है लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: हाँ,
1: हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें होना होगा एतबार, दिल भर यार तुम्हें होना हो।
0: हिसार में गर्मी कैसी है?
1: जी काफी है जी, 2-3 दिन से तो काफी हो रही है मैडम।
0: हाँ, तो आप अपना और बच्चों का परिवार का किस तरह से ख्याल रखती हैं?
1: जी मैं जी, बच्चे तो मान सुबह सुकून में चले जाते, पर उनको पानी की बोतल और मतलब जो साथ में देकर भेजते हैं मैडम।
0: हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ खाकर स्कूल में भेजिए, और अब तो स्कूल की छुट्टियाँ पड़ ही जाएंगी शायद, है ना, जल्दी।
1: जी मैडम, खाली खाली पेट नहीं निकलना चाहिए मैडम घर से बाहर, और कुछ तौलिया वगैरह, अगर जेंट्स घर से बाहर निकलते तो सर पे तौलिया वगैरह डाल के निकलना चाहिए मैडम।
0: बिल्कुल, और कोशिश हम ये करें कि जरूरी ना हो तो दिन के 12 बजे से 3-4 बजे तक बाहर ना जाए, सुबह शाम अपने काम निपटा ले, और यदि जरूरी ना हो तो ना जाए। बिल्कुल,
1: जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी,
0: घर के बने जो पेय पदार्थ हैं, नींबू शिकंजी है, दही की लस्सी है, है ना, इस सब का प्रयोग करें। तो सोनिका, आपको सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

0: अगले श्रोता से बात करने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और देखते हैं अब हमारे कौन से साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए।
5: नाम रोहित बोल रहा हूँ मैडम, चंडीगढ़ से।
0: हाँ जी रोहित, चंडीगढ़ से, क्या करते हैं आप?
5: मैं वकालत करता हूँ मैडम।
0: अच्छा जी, कैसी चल रही है आपकी वकालत?
5: अच्छी चल रही है मैडम।
0: चलिए अच्छी चले, हम यही कामना करते हैं। और आप यदि कोई देखिए थोड़ा सा कमजोर है आर्थिक रूप से, तो उसकी थोड़ी मदद भी कर दीजिए।
5: जी बिल्कुल मैडम।
0: हाँ जी, तो कौन कब से सुनते हैं आकाशवाणी रोहतक को?
5: मैं तो आप ये समझो कि 1978 से सुन रहा हूँ।
0: चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पुराने सुनने वाले हैं। फोन करते रहते हैं कार्यक्रमों में?
5: हाँ जी फोन करता रहता हूँ।
0: ठीक है, कौन सा गीत आप सुनेंगे आज?
5: फिल्म निशान का गीत है, किशोर कुमार की आवाज में, जहाँ भी तू जाएगी हमसा न पाएगी।
0: इसमें किशोर के साथ शायद लता जी की भी आवाज है, किशोर कुमार के साथ।
5: हाँ जी हाँ जी।
0: हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? सुनवा दे गीत।
5: बस मैडम सुनवा दो गीत।
0: जी धन्यवाद आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: और अब हमारे साथ अगले साथी आ चुके हैं, उनकी पसंद का गीत जानते हैं। हेलो,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी प्रेम सिंह जी, कैसे
1: जी
0: हैं? और उज्जैन का
1: मैं
0: मौसम
1: बहुत
0: बताइए ना, कैसा है?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ। और गर्मी काफी है यहाँ पर, 45 डिग्री करीबन टेम्परेचर हो जाता है दिन में।
0: अपने शहर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, हमारा शहर एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है। पिपरा नदी के किनारे बना हुआ है महाकालेश्वर बाबा का मंदिर,
0: बिल्कुल
1: जहाँ पर
0: धार्मिक
1: दूर
0: नगरी
1: दूर
0: है
1: से दर्शन कर जी
0: जी।
1: मैं बताऊँ, जहाँ पर दूर और 2028 में सिंहस्थ का मेला भी लगेगा। जी तो
0: कब
1: मतलब
0: से?
1: काफी अच्छा इस तरह यहाँ पे मतलब श्रद्धालु लोग आते हैं, और मतलब रास्ते काफी चौड़े कर दिए गए हैं, आने जाने के लिए मतलब सारी सुविधाएं।
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ इतना आवागमन रहता है यात्रियों का, जो धार्मिक स्थल वहाँ होते हैं, तो कोई दुर्घटना वहाँ ना घटे, इसके लिए बिल्कुल प्रशासन को ध्यान तो रखना ही चाहिए, है ना?
1: जी बिल्कुल, एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है। और बताऊँ आपको, शिप्रा नदी जो है ना वो भी मतलब पूरी क्लीन कर दी गई है, और साफ पानी होता है उसमें।
0: बिल्कुल, और इसमें आम जो नागरिक है उसका भी योगदान होता है नदियों को साफ रखने में, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, कचरा कुट्टा मतलब कोई भी नाली में नहीं डालते हैं, जब डस्टबिन होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, और आसपास मतलब पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल, आपकी बातों से अन्य सुनने वाले भी प्रेरित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: गीत बताइए।
1: जी, फिल्म का नाम है आपकी कसम, और गाने के बोले करवटे बदलते रहे सारी रात हम।
0: चलिए, इन बातों के बाद सुनवाते हैं आपको गीत। शुक्रिया आपका।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो दीदी, नमस्कार। धन्यवाद
0: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है।
1: दीदी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: मध्य प्रदेश से
1: जी,
0: भगवान सिंह सिहार
1: भगवान सिंह परमार।
0: परमार। चलिए,
1: जी
0: कैसे हैं आप? आपका तो नाम ही बहुत अच्छा है।
1: जी दीदी, धन्यवाद। अच्छे हैं दीदी। और हमारे इधर काफी टेम्परेचर रह रहा है, गर्मी काफी पड़ रही है। अभी 45-46 डिग्री हो जाती है दिन में
0: हाँ
1: दीदी।
0: जी, इतना ही पड़ रहा है। और अभी तो देखिए, 25 तारीख से नौतपा शुरू होगा और 2
1: जी
0: जून तक ही होगा, और ज़्यादा
1: हाँ जी
0: गर्मी
1: जी
0: पड़ेगी। तो ऐसे में आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिए बाहर जाते वक्त,
1: जी
0: है
1: दीदी,
0: ना?
1: बिल्कुल रखते हैं। फिल्म
0: बिल्कुल। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: का नाम है दीदी बाहर आने तक, वो गाने के बोल है मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, ये वाला गीत सुनना है दीदी। और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप के सभी सदस्यों को डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: जी बिल्कुल, सभी सदस्य सुनिए और रेडियो से अपने जो भी और साथी हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए।
1: जी दीदी, हमारे ग्रुप में आपका अपडेट हमारे गौतम राय बोले जी डाल देते हैं, सब श्रोता आपको सुन रहे हैं लाइव अभी जितने भी ग्रुप में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, सभी को हमारा नमस्कार, और हमारी जो भावनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं रेडियो के माध्यम से। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं रेडियो से लगातार जुड़ने के लिए। हम
1: धन्यवाद दीदी
0: सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी, बिल्कुल धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: और देखते हैं अब हमारे अंतिम कॉलर हैं शायद हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, श्रोता बंधु तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही।
1: राम राम बहन जी।
0: राम राम पप्पू राम जी, कहाँ चले गए थे? हाँ
1: वहां बहन जी सही हो बहन जी? हाँ
0: बिल्कुल सही हूँ मैं तो, आप बताइए।
1: और ठीक ठाक है बहन जी? और आकाशवाणी परिवार ठीक ठाक है बहन
0: हाँ
1: जी?
0: जी सब ठीक है, बस अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि इस भीषण गर्मी में अपना विशेष ख्याल रखें।
1: जरूरी बहन जी, गर्मी बहुत ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है बहन जी।
0: और किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि थोड़ा सा सुबह शाम जो है वो पानी वो दें खेतों में, और थोड़ा सा गर्मी से बच के रहें।
1: हाँ सही बात है बहन जी,
0: हाँ,
1: ठीक
0: तो
1: सही
0: कौन सा
1: बात।
0: गीत सुनवाए आज?
1: आज मुझे आपके फिल्म का सुना दिए बहन जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी की आवाज में।
0: हाँ बिल्कुल सुनवा देंगे, खूबसूरत गीत है, पुराना गीत है। और कुछ कहेंगे?
1: बस बहन जी, और तो कुछ नहीं कहना, गर्मी में थोड़ा ध्यान रखें, यह बात सही कही आपने, बस इतना ही कहना।
0: खेतों
1: ठीक
0: में
1: है
0: अभी
1: बहन
0: क्या
1: जी,
0: बिजाई करनी है आपने?
1: खेती में बहन जी नरमा की बिजाई कर दी, और अब
0: हाँ,
1: बिजाई करनी है गेहूं, वो उसकी धान की।
0: और कब करनी है नरमा की बिजाई?
1: नरमा की बिजाई कई दिन हो गए बहन जी की हुई, नरमा अच्छा खड़ा है खूब बढ़िया।
0: अच्छा चलिए अच्छी बात है,
1: हाँ बहन जी,
0: तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ सुना दो बहन जी,
0: धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद बहन जी।

हेलो रोहतक कार्यक्रम आप सुन रहे थे। और चलते चलते दो बातें और कहना चाहेंगे कि बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है इन दिनों, तो थोड़ी सी बिजली की बचत करें, फिर काफ़ी कट लगते हैं और परेशानी होती है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा पानी का प्रबंध आप अपने घर में ज़रूर करें। और अब इन्हीं सब शब्दों बातों गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का हेलो रोहतक कार्यक्रम यहीं समेटने की।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो रोहतक आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसी के, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय दोपहर के 12:30 और 8 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
1: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक

0: सुंदरता का प्रश्न है। यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: हम तुम खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ,
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू। इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल
5: चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
8: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
9: अरे वाह अटकू मटकू,
4: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
5: पेड़ हमारे
6: दोस्त हैं।
5: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
10: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
11: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
12: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
11: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विद्यालय आधारभूत संरचना की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सुझावों को स्वीकार करते हुए हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। शिक्षा मंत्री के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालयों की शुरुआत की। वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थी और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन का सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राज्य के सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे अपनी अपनी पार्टियों के लिए बूथ लेवल एजेंट 1 व 2 की नियुक्ति आगामी सप्ताह के अंदर करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचित करें, क्योंकि शुद्ध व सटीक मतदाता सूची तैयार करवाने में BLO व BLA एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 15 जून से आरंभ किया जा रहा है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि राज्य में मतदाता सूचियों की मैपिंग का कार्य 64% हो चुका है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में मतदाताओं के सहयोग के लिए विधानसभा वार व जिला मुख्यालय पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संघन संशोधन कार्यों के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान करना राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे CM विंडो पर मिली शिकायतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर CM विंडो पर मिली शिकायतों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और मंडल आयुक्त इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संगम फिल्म के गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर मुकेश की और गीत लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, राजेश रोशन के संगीत के साथ जूली फिल्म से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, गुलामे फिल्म से।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: फंसी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: शराबी फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा अनजान ने, संगीत दिया बप्पी लहरी ने। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

गद्दार फिल्म से गीत आपने सुना। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर और साथियों की। संगीत था राजेश रोशन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। आवाज़ें हेमलता और जसपाल सिंह की।

बप्पी लहरी के संगीत के साथ इंदिवर के बोल आप सुन रहे थे। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म का नाम था आंखें। अगला गीत आपको सुनवा रही हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से।

एसपी पाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना हम आपके हैं कौन फिल्म से। अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवा रही हैं सुहाग फिल्म से, आवाज़ें आशा भोसले और शशि कपूर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 2 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले अंग्रेजी में, 2:15 पर हिंदी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa William.

0: नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
2: India has recently launched...
3: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
2: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
3: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
0: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन

0: मोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
2: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: यहाँ पढ़ना और दो जी टिप का बताइए हैं। तो इसमें थोड़ा हक काम कर दिया ना, हमने सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, चाहे हम खेत खार में काम कर रहे हैं या कहीं भी हम काम कर रहे हैं, अपने पशुओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि भाई तापमान बहुत ऊंचाई पर जान लाग रहा है। तो इसलिए खान पान का भी ध्यान और भाई नुहान प्याण का भी ध्यान और साथ साथ में काम कर दिया ना अपनी सेहत का भी बचाव, ये सारे काम करने हैं, क्योंकि खेत के काम रोके तान निभा दी और सारे काम करने पड़े हैं। खास तौर पे बात करें, देखो भाई कपास की फसल है जिन भाइयों ने भाई शुरू में अप्रैल में वो लगाई थी और कुछ थोड़े बहुत बाद में लगाई है, क्योंकि रेतीले इलाके हम तो पहले लगा दे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान यूँ रखें कि भाई कपास की फसल में जो कही जा है पहली जो सिंचाई हम करें हैं वह जितनी लेट हो है उतनी बढ़िया हो है, लेकिन इतनी भी लेट ना हो कि भाई हमारी फसल ने नुकसान पहुंच जाए। तो जब भी हम देखें कि भाई फसल ने सिंचाई की आवश्यकता कब है, तो भाई हम जाके देखें सवेरे और शाम ने खेत में, खास तौर पे सवेरे जाके देखें, अगर सवेरे पत्ते मुरझा रहे हैं दिखाई दें कि भाई यहाँ पानी की ज़रूरत है इन्हें, तो हम सिंचाई करें। आमतौर पर 40-45 दिन तीन हम खींच कर दे हैं जो कपास की फसल है उसके अंदर। दोपहर में जाकर ना देखें कि भाई दोपहर में देखें कि भाई पत्ते ऐसे हो रहे हैं तो इसमें हमने पानी की आवश्यकता है, तो दोपहर में से ही पता नहीं लगेगा, सवेरे जब हम जाके देखेंगे जब हमने पत्तियाँ की हालत इसी दिखाई देगी पौधे की कि भाई इसने पानी की वाकई में ज़रूरत है, तो हम सिंचाई करें। बाकी रही बात भाई गन्ना फसल की, गन्ने फसल में भी भाई अपनी हम मोडी भी ले रहे हैं या हमने नौलब बिजाई करी है उसमें भी है, तो उसमें भी हमने समय समय पर और जो भी अपना खेत की मिट्टी का हिसाब देख कर नमी देख कर ना उस हिसाब से हमने उसमें भी हमने सिंचाई करते रहना है। और जो खरपतवार हैं वो भी टाइम टाइम पर नड़ाई गुड़ाई करके ना निकालते रहना है। इस टाइम पर जो अपना कपास की भी भाई गन्ने की फसल की भी निराई चालनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार अगर जमा हो लेंगे तो फिर दिक्कत आओगी। तो गन्ने की फसल में तो खास तौर पर हमने ध्यान रखना है कि भाई जो अपने खरपतवार हैं उन निराई गुड़ाई करके ना हमने निकालने हैं। और गन्ने की फसल में आगे चाल कई बागला भी ना हो, इसमें तीसरी मात्रा हमने खाद की देनी है, यानी कि यूरिया की इस महीने के जो है आखिर में दे दें या फिर जून ना होगा तो इसके शुरुआत माह में इसमें खाद की मात्रा हम दे सकते हैं 45 किलोग्राम प्रति एकड़ हमने देना है यूरिया, उस हिसाब से हमने डालना है। बाकी धान की फसल की रोपाई जीत अपने द्वारा पानी पात के साधन हैं तो उनमें भी शुरुआत हो जाएगी, इससे अगले महीने शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि रह रहे हैं भाई 8-10 दिन रह रहे हैं, तो इसमें जिन भाइयों ने भाई अपना नर्सरी में बिजाई ना करी है तो अपना नर्सरी में बिजाई ज़रूर कर लें पौध की, और फिर जो है रोपाई जब भाई अपना एक बिलात की पौध हो जाए अपनी उस टाइम पर फिर रोपाई का काम इसका चालू हो जाए। तो पौध तैयार कर दिया ना, ये बड़ी सावधानी बरती है हमने, बढ़िया तरीके से अपना बीज जिस किस्म के हमने चुनाव करना है वह किस्म का चुनाव करें, घर से अगर बीज है तो फिर उसने भी हम सुथरी डाल दो दाप लगा के और अच्छे तरीके से तो उसने देख लें, पहले नमक के पानी में उसने भिगोएंगे, हम 10-1 किलो पानी ले लें उसमें 1 किलोग्राम नमक डाल दें, उसमें 10-1 किलोग्राम बीज ने डालें जा आते हैं लाएं जा, जो जो बीज ऊपर तैरा हुआ है उसने सावधानी से निकाल दे रहे हैं और जो नीचे बैठ गया है उसने अपना अलग से निकाल लें, और फिर उसने भी जो है साफ पानी तक कई बार अच्छी तरीके से तो उसने धोएं ताकि उस पर नमक की चास ना रहे, और फिर जो है अपनी जो दवाइयाँ हमने उपचार करना है वो उपचार करके ने और फिर जब फरियाला हो जाए तो हम नर्सरी में उसकी बिजाई करें। हाँ, किस्मा का ज़रूर ध्यान रख लें कि भाई हमने कौन सी किस्म लेनी है उस हिसाब ने देख कर अपना किस्मा के हिसाब ने देख देख कर और जब हमने इसका काम करना है। बाकी रही बात जो अपनी सब्जी वाली फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पर जो बेल वाली सब्जी फसलें हैं उनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो इस समय पर चलन में है और बाजार में भी आ रही हैं और उनमें फलां की तुड़ाई चलने जा है, और भाई खास तौर पर सब्जी फसलों में बेल वाली सब्जी फसलें इस टाइम पर सही तरीके से चल जाए हैं, तो उनकी हम देखभाल क्यों करें आज इससे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भाइयों का मनोरंजन कराऊंगे, भाइयों को रागनी सुनवाऊंगे और गायक कलाकार होंगे नरेंद्र डी गलिया और उनके साथी।
1: बात उस मौके की जब नर सुल्तान महकदे को छुटवाने की बात जानी चोर को कहता है और जानी चोर उस बात वरणी की बात कहता है और जानी चोर एक बात के द्वारा नर सुल्तान को समझाता है। क्या बताया? सुखी वो दुखी जगत में

खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। जो खेती बाड़ी के काम धंधे हैं सारा साल तकरीबन साल दे रहे हैं, और यूँ जो मौसम है भाई, जेठे का घामला

जो कही बात का तेरा कही बात का ना ख्याल करे वो उस ते बड़ के घाटी ना जो बकत पड़े पे आँख चुरा जा।

ढाल की बात करे से क्यों कर बदली चाल तने मरवण खड़ी लखावेगी जे करी बात की टाल तन लक्ष्मी चंदे जीवेगा इतने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो भाई ये सुन लिए विज्ञापन भी और रागनी भी, और भाई गायक कलाकार थे अपने नरेंद्र डी गलिया और उनके साथ ही इनकी गाई और भैया ने एक रागनी और सुनवाऊंगी। लेकिन जो जिक्र हमने कराया था कि भाई बेल वाली सब्जी फसलों की देखभाल, तो बेल वाली सब्जी फसलों में भाई तरबूज है, खरबूजा है, ये पक्के फल अपना तोड़कर न बाजार में भेजें। और इस महीने जो है दोनों फसलें अपने जो है पक्के तैयार हो जाए हैं और तैयार के बाजार मारिए। काफ़ी दिन हो गए, तुड़ाई का काम भी पूरा कर लिया जान लग रहा है। तो फड़ा के पकते समय ध्यान रखना है कि भाई सिंचाई ना करें इनमें, क्योंकि सिंचाई करने में फिर इनका मीठापन कम हो जाए है, और बारिश अगर हो जाए तो भी इनमें मीठापन कम हो जाए है। तो फसल पूरी हो जाने पर अपना खेत में दूसरी जो फसल है अपनी खरीफ की यानी कि बेल वाली फसलें उनकी भी हम बिजाई कर सके हैं। दूसरी फसला में भाई लौकी की बात करें, तोरी की बात करें, करेला है, टिंडा है, ये जो फसलें हैं इनकी भी हम काश्त कर सके हैं। खरबूज और तरबूजा की फसल जब अपनी पूरी हो जाए उसके बाद में, और जो हाल साल में खड़ी हैं फसलें आ रही हैं अपनी, उन्हें भी भाई कच्ची अवस्था में तोड़ के बाजार में भेजें। चाहे वो घिया की बात करें, हम तोरी की बात करें, करेले की बात करें, टिंडे की बात करें, तो सारी की सारी फसलें कच्ची अवस्था में तोड़ें और फिर बाजार में भेजें। और इनमें थोड़ा सिंचाई का भी ध्यान रखें, अपने खेत की नमी का हिसाब देख लें, और अपना जो फसल है, क्योंकि किसान भाई भी सारी अन खेती कर रहे हैं तो अपनी फसल का भी पता रहे, अपनी ज़मीन का भी पता रहे कि कितने के दिन में जो है पानी पात हमारी फसल मांग लेगी, हमारा खेत जो है कितने दिन तक नमी उठते हैं। लेकिन सिंचाई कर देना इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खास तौर पर या तो सवेरे के टाइम पर या फिर सांझ के टाइम पर सिंचाई करें, दोपहर के वक्त अपना खेत में या फसल में जो है सिंचाई ना करें। एक इनका थोड़ा है देखभाल की न्यू भी हमने ज़रूरत पड़ेगी कि भाई जो खास तौर पर लाल बूंदी है, लालड़ी जिसने हम कह दे हैं, या इन बेल वाली फसलों पर थोड़ा हा असर दिखा दे है, तो इसके बचाव के लिए हम 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25% ताकत की, या फिर हम 30 मिलीलीटर फेनवाल रेट ले सकें 20% ताकत की, 100 लीटर पानी में इसका घोल बना के, और अगर लालड़ी का प्रकोप दिखाई दे है तो एक एकड़ पर हम इसका छिड़काव कर सके हैं। और फिर इस कीट की लट भी बन जा करें तो उसके बचाव के लिए हमें 1 किलोग्राम 600 यानी कि 1 लीटर 600 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफास 20% ताकत की बिजाई के एक महीने के बाद सिंचाई के साथ अगर लगा कर पानी दे दें हैं तो उससे भी हमारा फिर बचाव बन जाए। एक इसमें रोग आकर है सफ़ेद चूर्णी, बेल वाली जितनी भी अपनी फसलें हैं सफ़ेद चूर्णी रोग तो बचाने खातिर हमने 8-10 किलोग्राम बारीक गंधक ले लें और इसका हम दूड़ा कर दें। दूड़ा सवेरे करें या शाम के टाइम पर करें, दोपहर को इसका दूड़ा ना करें, या फिर हम 500 ग्राम घुलनशील गंधक ले सकें जिसने सल्फेक्स कह दे हैं, 200 लीटर पानी में इसका घोल बना के इसका भी अपनी फसल बाम छिड़काव कर सके हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई जब गंधक का हम छिड़काव करें हैं तो खरबूजे की फसल पर गंधक का छिड़काव हमने नहीं करना है, ना तो इसमें जो है नुकसान कर देगी। अगला जो इसमें आ जाए फिर आड़ है, माइट्स है, सफ़ेद मक्खी है, रैतेला है, फल मक्खी है, क्योंकि जो भी अपनी फसलें हैं उन्हें एक तो पहली बात तो यह है कि भाई जो खरपतवार हैं उससे मुक्त रखें, क्योंकि खरपतवार बहुत से कीड़ा आकर्षित करे हैं, फसल में बीमारी फैलावे हैं, तो जितना उसके अपना उसमें खरपतवार ना होने दें, फसल में निराई गुड़ाई ज़रूर कर दे रहे हैं। खरपतवार जो है जोड़ा तय अपने साफ़ करें, जो मेड़ हैं उन्हें भी अपना साफ़ सफाई रखें ताकि उनके ज़रिए भी कोई कीट पतंगा अपनी जो फसल है उस पर ना आ सके। तो फिर भी अगर आ जाए है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी है, फल मक्खी है, भैया रहतेला है, यूँ तकरीबन आ जाए क्योंकि खेत तकरीबन और खाली हैं तो जो अपनी सब्जी वाली फसलें हैं इनकी ओर ही आकर्षित हो जाएँ। तो इसके लिए फिर हम ये करें कि 250 मिलीलीटर मेलाथियन ले लें 50% ताकत की, और 250 लीटर पानी में इसका घोल बना कर अपनी एक एकड़ की जो अपनी फसल है, चाहे वह तोरी की है, करेले की है, टिंडे की है, चाहे कोई सी भी है बेल वाली की, तो उस पर हम छिड़काव कर सकते हैं। फल मक्खी का अगर प्रकोप दिखाई दे है तो फिर हमने इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी मेलाथियन की, वो हम 400 मिलीलीटर मेलाथियन ले लें 50% ताकत की, या फिर हमें इसमें इसके साथ है 1.25 किलोग्राम गुड़ भी मिला लें और 250 लीटर पानी में इनका घोल बना कर दोनों का, और फिर एक एकड़ के हिसाब से हम छिड़काव कर देंगे, तो फिर यह जो फल मक्खी है इससे हमारी फसल का अच्छी तरीके से बचाव हो जाएगा। बाकी तो यूँ कि भाई सिंचाई का ध्यान रखना है, क्योंकि तापमान बढ़ता जान लग रहा है, सिंचाई का भी यूँ ध्यान रखना है कि सवेरे या शाम ने सिंचाई करनी है, दोपहर को हमने सिंचाई नहीं करनी, खरपतवारों तो अपनी फसल को बचा के रखना है। इन बातों का सही तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो भाई जो अपनी फसल हैं, और एक तुड़ाई का ध्यान रखना कि कच्ची अवस्था में ले जाएं, पक्की अवस्था में अगर चली गई तो फिर उनके भाव हमें नहीं मिल पाओगे। तो भाई समय बच गया तो जिक्र और भी कर लेंगे भाई, या तो एक रागनी और सुनवा दें गायक कलाकार एक बार फिर नरेंद्र डी गलिया और उनके साथी।
5: बात उस मौके की जब जानी चोर अदली खा की डोडी पे परवाना लिख के टांग देता है और कहा के बागों में पहुंच जाता है, वो मालन के बाग थे, उनमें देख कर हरियाल को क्या सोचता है मन में जानी चोर, क्या लिखा है?

ओए इसे इसे काम करे मने, जो काम ना आया ना अदली खां से भूत देख लिए अटके कदे गया ना। ओए नू सोचा सब पृथ्वी ऊपर।

तो भैया तो भैया ने रागनी सुनी, गायक कलाकार थे नरेंद्र डी गलिया और उनके साथी। और वो जो जिक्र चल रहा था कि अपनी जितनी भी साग सब्जी वाली फसलें हैं भाई, सारिया में देखो खरपतवार, चाहे कोई सी भी फसल हुई, चाहे साग सब्जी वाली हुई या फिर कोई दूसरी फसल हुई, सारिया में नुकसान पहुँचा है, क्योंकि ये कीड़े बीमारियां ना आकर्षित कर रहे हैं। तो इसमें जो है कोई सी भी अपनी जितनी भी फसलें हैं, चाहे अमारवी की बात करें, भिंडी की बात करें, टमाटर की बात करें, सारी की सारी फसलों में एक तो बढ़ता तापमान है, इसमें हमने सिंचाई का ठीक तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम ऐसा है इसमें भाई पानी पाते अगर हम ठीक ठाक अपने खेत में नमी रखे रहेंगे तो वो ठीक ठाक चले जाएंगी, क्योंकि पानी के ऊपर है सारी की सारी फसलें। और इसके साथ साथ में जो दूसरी फसल की हमने तैयारी करनी है उसका भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी फसल हम थोड़ी अगेती ले हैं तो अगेती फसल फिर थोड़ी अगेती ख़त्म भी होगी। तो उसके बाद जो समय बच रहा है, चाहे मूली की बात करें, पालक की बात करें, ये जो फसल ऐसी हैं कि भाई नाम कोई से मौसम में भी लगा सके हैं, तो भाई जो बेमौसमी फसलें हैं उनके भाव भी ठीक मिल जाए हैं। और भाई जो पालक की और मूली की बात करें तो इसमें तो थोड़ा एक खुबाता भी कम है और आमदनी भी इसकी ठीक ठाक हमने मिल जाए है, तो खेत खाली होते और अपना इसकी तैयारी ज़रूर करें। हाँ एक बात भैया थोड़ा और बता दें कि भाई मिट्टी परीक्षण करवा सकें, क्योंकि खेत खाली हैं जिन भाइयों के और आगे धान की रोपाई करनी है, तो मिट्टी परीक्षण करवा लेंगे तो उसमें उन आगे चाल का थोड़ा आसानी आ रह जाएगी कि भाई जो ज़मीन में पोषक तत्व हैं उनका पता लग जाएगा कि हमारी ज़मीन के अंदर कौन से पोषक तत्व कम हैं और कौन से पोषक तत्व हमने देने हैं, क्योंकि बिना परीक्षण कराए हम खाम खा का DAP यूरिया दो ही खाद हम जोर रखे हैं, लेकिन तत्व की कोई और तीसरे की कमी पा जाए ज़मीन के अंदर। और इसके साथ साथ में ट्यूबवेल है, पानी पात का साधन बढ़िया है, ट्यूबवेल में पानी बतेरा है, लेकिन उसके भी पानी की जांच हमने करानी चाहिए, खास तौर पर जब 1 घंटा ट्यूबवेल चल देना हो जाए उस टाइम पर प्लास्टिक की हो या कांच की हो साफ़ सुथरी बोतल, उससे पानी में कई बार धो धा के और फिर जो है उसने भरें और उसके बाद जो है उसका परीक्षण करावें। तो भाई देख लिया घड़ी का न्या, कार्यक्रम का समय हो समाप्त, चालें सारे बण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 3:14 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होते हैं हमारी पहली सभा के, माफ़ कीजिएगा, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.5 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर शाम 5:30 पर हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30:17 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद आज के समय में पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और खतरा बन चुका है। देश के नागरिकों को इस खतरे के प्रति जागरूक करने और युवाओं को हिंसा के रास्ते से दूर रखने और समाज में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिवस को मनाने के पीछे एक बेहद दुखद और ऐतिहासिक कारण है। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा आत्मघाती बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई। देश के एक युवा और दूरदर्शी नेता के इस आकस्मिक निधन को पूरे राष्ट्र के इस आकस्मिक

0: निधन ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद घटना के बाद सरकार ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि यानी 21 मई को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, यह केवल विनाश, दुख और बर्बादी लेकर आता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की प्रगति और खुशहाली के लिए शांति और सुरक्षा सबसे पहली शर्त है। इसी के साथ साथियों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात कर लेते हैं विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस के बारे में। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो विभिन्न भाषाओं, धर्मों, खानपान, वेशभूषा और परंपराओं जैसी एक बहुरंगीन चादर की तरह है। इसी बहुसांस्कृतिक स्वरूप को सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 मई को विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निष्ठा बंसल।
1: धन्यवाद अंजलि। आज मैं निष्ठा युवा संसार कार्यक्रम में विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस विषय पर बताना चाहती हूँ। विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस हर वर्ष आज ही के दिन 21 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाने, शांति तथा सतत विकास के लिए अंतर सांस्कृतिक संवाद के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। सांस्कृतिक संवाद केवल विविधता का उत्सव नहीं है, यह वैश्विक शांति और निरंतर विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद सभी पक्षों को सशक्त बनाता है, पूर्वाग्रहों को तोड़ता है और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। माना जाता है कि अधिकांश संघर्ष सांस्कृतिक गलतफहमियों के कारण ही होते हैं, जिन्हें खुले और सम्मानजनक संवाद के माध्यम से रोका जा सकता है। कला, खेल, शिक्षा और अंतर सांस्कृतिक संबंध आपसी विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विश्वास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोगपूर्ण विकास की नींव रखता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लोग अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर संवाद करते हैं तो वे एकता और साझे भविष्य के बीज बोते हैं। मानवता ने अपने विभाजनों की भारी कीमत चुकाई है। युद्धों और संघर्षों ने हमारी ऊर्जा, समय और संसाधनों को नष्ट कर दिया है। आज की आपस में जुड़ी दुनिया में आवश्यकता युद्ध की नहीं बल्कि शांति, विवेक और करुणा की है। ऐसे में विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद के महत्व को उजागर करता है। अगर हम बात करें इस दिन की इतिहास की तो वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में हुई घटनाओं के जवाब में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और फिर दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित करके 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस घोषित किया। तब से हर साल यह दिवस मनाया जाता है।
0: जी,
1: आइए अब जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण दिवस के उद्देश्य। विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस दुनिया भर की संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने और समाज में समवेशिता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। दुनिया के अधिकांश संघर्षों का एक सांस्कृतिक पहलू होता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य इन संघर्षों को कम करना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना है। इन सब के अलावा यह दिवस यूनेस्को के 2005 के कन्वेंशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये उद्देश्य इस बात पर बल देते हैं कि सांस्कृतिक विविधता को विभाजन नहीं बल्कि विकास की शक्ति के रूप में अपनाया जाना चाहिए। संवाद समझ और सहयोग का मूल आधार है और यद्यपि कई लोग सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट समझ और सहमति में बाधा मानते हैं, वास्तव में यह सार्थक और उपयोगी संवाद को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में सांस्कृतिक विविधता संवाद और समझ को सुगम बनाती है, जो शांति और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देती है, साथ ही सतत विकास और प्रगति को भी प्रोत्साहित करती है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाला विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस संवाद और विकास के लिए वैश्विक संस्कृतियों की विविधता का स्मरण कराता है। आइए अब बात करते हैं कि इस दिवस को कैसे मनाया जाता है। इस दिन आम जनता के बीच सांस्कृतिक विविधता और विकास से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा के कार्यान्वयन की प्रगति पर प्रस्तुतियां की जाती हैं, ताकि लोगों को अपनी और दूसरों की संस्कृति को गहराई से समझने में मदद मिले। आयोजनों में शामिल हैं पेशेवरों के लिए सेमिनार, बच्चों और किशोरों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूकता के लिए समारोह। सांस्कृतिक विविधता में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लिए लोगों के बीच भाषा, परंपरा, मान्यताओं और मूल्यों में अंतर शामिल है। विभिन्न समूहों के बीच आपसी सम्मान, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक विविधता जरूरी है। यहाँ पर विविधता से हमारा अभिप्राय है विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों की व्यापकता, साथ ही अनुभव, ज्ञान और समझ का विस्तार। वर्ष 2011 से संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन ने यूनेस्को और अन्य सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के साथ साझेदारी में विविधता और समावेशन के लिए काम करें अभियान चलाया है। यह लोगों से आग्रह करता है कि वे सांस्कृतिक विविधता के विश्व दिवस पर विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानें या अपनी संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करें। वर्ष 2018 में जर्मनी में इस दिन यूनेस्को ने तर्क दिया कि एक विविध सांस्कृतिक क्षेत्र एक विविध समाज में सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देता है। यूनेस्को ने इस बात की भी सिफारिश की कि सांस्कृतिक संस्थान और सार्वजनिक निकाय विविध संस्कृतियों की कला के लिए अपना समर्थन बढ़ाएं। इतना ही नहीं, बोत्सवाना में यह दिवस नियमित रूप से राष्ट्रीय और जनजातीय समारोह और कलात्मक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। सांस्कृतिक विविधता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सांस्कृतिक विविधता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहाँ विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार और सम्मान दिया जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि विविध सांस्कृतियों के संपर्क में आने से आपसी समझ और सम्मान का निर्माण होता है। संवाद के माध्यम से हम अपनी समझ को समृद्ध कर सकते हैं, साथ ही दूसरों के अनुभवों से सीख भी सकते हैं, जिससे एक अधिक खुले विचारों वाले समाज को बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक विविधता विभिन्न दृष्टिकोणों, विचारों को एक साथ लाती है। यह विविधता नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने वाली शिक्षा प्रणालियाँ छात्रों को वैश्विक नागरिकता और विविधता के बारे में सिखाती हैं। विशेष रूप से विविध शैक्षणिक संस्थान युवाओं को जिज्ञासा के साथ विभिन्नताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। सांस्कृतिक विविधता हमारे जीवन को समृद्धि, रंग और गतिशीलता प्रदान करती हैं। यह एक संज्ञानात्मक और बौद्धिक द्वार खोलती है, इसलिए नए स्थानों की यात्रा करें, अनजानों से बातचीत करें, अंतर धार्मिक और अंतर सांस्कृतिक संवाद जैसे संबंधों को प्रोत्साहित करें। यह सपना केवल सौहार्द की एक मार्ग है, बल्कि 21वीं सदी में मानवता के अस्तित्व और उत्कर्ष के लिए अनिवार्य है। आइए हम अपनी विविधताओं को अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और एकजुट विश्व की आधारशिला बनाएं, और साथ ही संवाद और विकास के लिए वैश्विक सांस्कृतिक विविधता दिवस की भावना और मूल्यों को एक साथ जश्न मनाएं। धन्यवाद
0: जी। साथियों, अभी आपने सुनी यह वार्ता विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता विषय पर, और वार्ताकार थी निष्ठा बंसल। साथियों, अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत फिल्म वीर जारा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों ने। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है मदन मोहन।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म वीर ज़ारा से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था मदन मोहन ने। साथियों, कार्यक्रम में आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में। भारत समेत दुनिया के कई देशों में चाय केवल एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। इसी लोकप्रियता और इसके आर्थिक महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करने के लिए हर साल 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। मई का महीना अधिकांश चाय उत्पादक देशों में चाय की फसलों के उत्पादन और उसकी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य किसानों के अधिकारों और आजीविका की स्थिति में सुधार लाना, चाय की खेती में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देना ताकि जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे, लोगों को चाय के औषधीय गुणों और स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताना है। यह दिन हमें बताता है कि हमारी सुबह को खुशनुमा बनाने वाली इस चाय के पीछे लाखों बागान श्रमिकों और किसानों की कड़ी मेहनत होती है। यह दिन न केवल चाय के स्वाद का उत्सव मनाने का है बल्कि उन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और चाय के उद्योगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लेने का भी है। इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत फिल्म दूर की आवाज़ से, जिसे गाया है आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे ने। गीतकार हैं शकील, संगीतकार है रवि शंकर शर्मा।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का कट्टू।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म दूर की आवाज़ से। आवाज़ें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की। साथियों, सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक और गीत फिल्म अंदाज से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अंदाज से, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार थे हसरत जयपुरी। इसी के साथ साथियों, समय हो चुका है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:45 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:30 पर सुनेगा समाचार दर्शन, जिसे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर राजपाल की पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय होगा उर्वरकों का समुचित प्रबंधन, टीकाकरण कब, क्यों और कैसे। ये विषय होगा डॉक्टर परितेप सिंह की पूर्व प्रसारित बातचीत का कार्यक्रम ग्रामीण संसार में शाम 7:00।

कार्यक्रम सुगम संगीत में रात 8:25 पर सुनिएगा पामेला सिंह की गाई गजलें। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10:00। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनिएगा रात 9:15 पर। आज की फिल्म रहेगी आपके साथ और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के 23वें आंकलन समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 समारोह का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे हमारी विशेष सभा में प्रातः 11:00, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 9:30 पर सुनिएगा परिचर्चा। विषय होगा कचरा प्रबंधन समस्या समाधान व चुनौतियां। प्रतिभागी रहेंगे रचना भटेरिया, अरविंद भाटिया और रवि प्रकाश। परिचर्चा का संचालन करेंगे विनय कुमार। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुनेंगे रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। इसमें होगा कार्यक्रम युवा पसंद। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:25 पर। श्याम वर्ण विषय पर गांधी जी के विचार सुनिएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रातः 7:15 पर। कपास की पछेत बिजाई ये विषय होगा चर्चा का कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 2:30 पर। कृषि संबंधी समस्या व सुझाव ये विषय रहेगा सचिव फोन इन कार्यक्रम का कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर। NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:25 पर सुनेगा कार्यक्रम फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर होगा दिन में 1:10 पर। भूले बिसरे गीत सुनिएगा रात 10:00। एक रंग ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:00। एक फिल्म से रात 9:15 पर। फिल्म संगीत शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया, देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अफरा तफरी में खरीदारी की जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। हरियाणा की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए और उचाना से विधायक दिवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आज कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के तौर पर देख रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात का भारत में 75 से 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा भी शामिल है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि श्री गांधी की नकारात्मक राजनीति की वजह से लोग चुनावों में कांग्रेस को नकार रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा,
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है, जबकि 1 मई से अब तक वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति 1,32,000 टन रही है। प्राकृतिक गैस के बारे में उन्होंने बताया कि पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार हो रहा है। मार्च से अब तक 7,60,000 से ज्यादा घरों को इससे जोड़ा जा चुका है। साथ ही 2,81,000 पीएनजी कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरीक्षण, जुर्माना और नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अफरा तफरी में ज्यादा खरीदारी न करने की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने कहा है कि मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 15 जून से 14 जुलाई तक होने जा रहा है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को किया जाएगा। श्री ए श्रीनिवास आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी।
3: 14 मई को सर्कुलर में हरियाणा का SIR डिक्लेयर हुआ है, जो क्वालिफाइंग डेट 1 जुलाई से मानते हुए हम पूरा जो इलेक्टोरल रोल है हरियाणा का, इसको कम्प्लीटली रिविजन करेंगे, जिसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हर 20 साल में होता है, पिछली बार 2003 में हुई है और इस बार 2026 में हो रही है। जैसे हर साल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन तो होता ही है, बट अदरवाइज ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम एन्यूमरेशन फॉर्म्स के तहत इलेक्टर्स का नया तरीके से पूरा लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आयोग ने बहुत डिटेल्ड शेड्यूल बनाया है।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, उनकी बूथवार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गणना फॉर्म वापस नहीं मिले हैं वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर अनुपस्थित स्थानांतरित मृत लोगों की पहचान कर रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे बीएलओ को सौंप सकता है। एक सवाल के जवाब में श्री श्रीनिवास ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों और निर्वाचन क्षेत्रों में एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1950 दिया गया है। यह हेल्पलाइन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 पालियों में काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने उच्च गुणवत्ता वाली कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए इस वर्ष 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके साथ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की संख्या 70 हो गई है। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज पलवल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इनमें डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, बी वोकेशनल एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, बी वोकेशनल प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बी वोकेशनल इंटीरियर डिजाइन, बी वोकेशनल फ्रेंच, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, LLM शामिल है। उन्होंने फिजियोथेरेपी कोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि नए पाठ्यक्रम कौशल और रोजगार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: उसकी आराम से वर्किंग, उसकी अर्निंग चल जाती है, तो वो कई बार दो दो तीन तीन चार चार घरों में जाके भी फिजियोथेरेपिस्ट अपनी इनकम करता है। तो ये कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम इस बार शुरू कर रहे हैं। बैचलर फार्मेसी हमने शुरू किया है जो 4 साल का प्रोग्राम है और लगभग 60 के करीब सीट है। उसमें भी हमारी अच्छी प्लेसमेंट रहेगी। चाहे तो बच्चे अभी फार्मा करने के बाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ये तीन तरह के जो तीन नए कोर्सेज जो मैंने बताए, ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाले हैं हमारे पलवल एरिया के लिए।
1: उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीएससी नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी शुरू किए गए हैं। बहुत जल्दी ही इनकी मान्यता हमें मिल जाएगी। इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने बताया।
4: और ये भी बताऊंगा कि जो सारे प्रोग्राम शुरू करने के लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अखबार में हमारी एडवर्टीजमेंट आने वाली है जिसके माध्यम से लगभग हम 50 फैकल्टी मेंबर परमानेंट यहां अपॉइंट करेंगे जो कि हमारे नए कोर्सेज चलाने में हमारी मदद करें।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बकाली में खेत के रास्ते के बीच में खंभे और ट्रांसफार्मर लगाने वाले एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की जांच लाडवा के एसडीएम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के लाडवा के शिवाला रामकुंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को धमकी देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों को कहा कि सभी नागरिक शिकायत पत्र पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि विभाग उनसे संपर्क कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 338 शिकायतों को सुना। उचाना से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सरकार और पार्टी कार्यकर्ता लगातार ईंधन बचाने के अभियान से जुड़े हुए हैं। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर उन्होंने कांग्रेस नेता की आलोचना की।
5: राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ये हमारे जो 140 करोड़ देशवासी है उनका अपमान किया है। पहले भी सबक सिखाया हमारे देशवासियों ने, अब भी आगे भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इसकी घोर निंदा आप लोग कर रहे हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया, देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अफरा तफरी में खरीदारी की जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। हरियाणा की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए और उचाना से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
7: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। देखो दोपहर को भी हम जिक्र कर रहे थे कि भाई तापमान बहुत बढ़ना शुरू हो गया, जेठ अपना सही तत् दिखा रहा है क्योंकि जेठ का महीना है भाई, गर्मी तो पड़ेगी और लू भी चल लेंगी, तो सारे काम हमने करने पड़े हैं मौसम चाहे किसाए भी हो। और किसान ने तो 12 मास खेत का काम रहा है, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे भाई जलती धूप हो, तो इसमें थोड़ा हम सावधानी ज़रूर बरत सके हैं भाई। सिर पर थोड़ा अपना लत्ता रुगड़ा ज़रूर रख लें, पानी पीने का जो साधन है अपना या पानी पात अपने दोहरे ज़रूर रखें, खेतों में काम कर दिया आना भी या फिर अपना पशुओं का भी अच्छी तरीके ध्यान रखें क्योंकि भाई गर्मियों में भी बहुत लग गए हैं, और अपना जो छोटे बच्चे हैं उनका भी इसी तरीके का हमने ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी ये बढ़ोतरी पर है और ये भाई तापमान और भी बढ़ेगा। साथ साथ में जो अपनी फसल है भाई, चाहे वह साग सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे भाई कुछ भाइयों ने दाना की पौध है उसकी अपना नर्सरी में बिजाई कर दी, तो हर चीज़ में पानी पात का हमने ध्यान रखना है। और साग सब्जी वाली फसलों की बात करें, सांझ के टाइम पर हल्की सिंचाई, सप्ताह में एक बार सिंचाई, छोटे बाग बगीचे हैं उनके अंदर भी भाई, जो कपास की फसल है उसमें अगर वह पानी बात मांग रही है तो उसमें भी पानी, हालांकि थोड़ा हाँ लेट दिया करें कपास की फसल में, लेकिन सवेरे जाके देखेंगे यार पत्ते मुरझाए लगेंगे तो उन्हें सोच लो कि भाई सिंचाई की आवश्यकता है। साथ साथ में अपना जो गन्ने की फसल है उसमें भी पानी पात की बहुत ज़रूरत पड़े है, चाहे वह नौलभ से चाहे मोडे वाली फसल है, क्योंकि इस टाइम पर गन्ने की फसल में सोखा नहीं रखना चाहिए, अगर उसमें सोखा रख दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई, जो गन्ने की फसल है वह कमज़ोर बन जाएगी। तो निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालना और भाई साथ साथ में यू काम भी अपना करना, और एक काम अपना रहे है भंडारण का भाई, गेहूँ का भंडारण सही तरीके से सुखा के झाड़ पे छोड़ करके और अपना टंकी में या भाई अपना जो भंडार ग्रह है उसके अंदर है, लेकिन उसकी भी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई वह भी किसान भाइयों ने अच्छी तरीके से कर भी दी होगी, स्टोर भी कर लिया, और नमी उसमें बिल्कुल भी ना रहने दें। बिना नमी के अगर हम भंडारण करेंगे तो आगे चाल के फिर अपने जो गेहूँ है जो अनाज है वो न्यू कानू बढ़िया हमने मिलेगा। और बीज का भी बात करें तो बीज भी सही तरीके से, बीच में फिर कोई बढ़िया धूप वाला दिन हो तो उसमें फिर धूप दिखा के और फिर उसका अपना सही तरीके से भंडारण करें। और भैया आज देखो जो गुरुवार का दिन है तो साप्ताहिक समाचार दर्शन जा रहे हैं तो उसका भी समय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम भाइयों का मनोरंजन करा देंगे, भाइयों को एक रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे गुलाब सिंह खंडवाल।
1: एरी मुसी

0: मोदी के आह्वान पर हरियाणा में ईंधन की बचत के लिए उठाए गए कदमों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने व पर्यावरण संरक्षण की अपील, प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया और हरियाणा के विभिन्न विभागों में ईंधन की बचत के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य एशिया में मौजूदा संघर्ष को देखते हुए सभी देशवासियों से ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने, घर से कार्य करने और वर्चुअल बैठकों को तरजीह देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने विदेशी यात्राओं को टालने, सोना न खरीदने पर भी बल दिया ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके।
1: जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक सोना नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: श्री मोदी ने कहा ईंधन की बचत से देश को लाभ होगा।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए प्रदेशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की और सरकारी विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की।
3: जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से

0: भी तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो, उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं।
1: विभिन्न विभागों में ईंधन बचाने के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लेने के लिए हमने अलग अलग विभागों से जुड़े लोगों से बातचीत की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
2: ये एक वैश्विक समस्या है। जब भी कभी वैश्विक समस्या आती है तो हर देश अपनी प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि हम लोग किस तरह के संकटों से कैसे पार जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल आया था उस वक्त भी देश के लोगों से अपील की थी, देश के लोगों ने उस अपील को माना। नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में जो विकसित अपने आप को देश कहते हैं उनको बड़ी हानि उठाती है और उसमें भी हमारा बड़ा बचाव हुआ। आज भी जब सारी दुनिया में एक वैश्विक संकट खड़ा हुआ है तेल को लेके, गैस को लेके, इस वैश्विक संकट के पार जाने के लिए जो देश अपनी योजना नहीं बढ़ाएगा, अपने लोगों को जागरूक नहीं करेगा, तो वहाँ स्वाभाविक बात है समस्या ज्यादा आएगी।
1: श्री महिपाल ढांडा ने सभी से अपने गैर जरूरी खर्चे कम करने की अपील की।
3: देखिए, जरूरी है कि हम लोग जो ये वैश्विक संकट है, इस वैश्विक संकट में अपने देश की मजबूती के लिए अगर कुछ अनावश्यक खर्चे तो उनको कम करें। यही बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कही है कि अनावश्यक खर्चों से बचें। उसमें अगर कोई राजनीति ढूंढता है या दूसरी तरह की बात करता है वो ठीक नहीं है। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है कि भाई हम लोगों को अगर आवश्यकता है तो हम लोग उसकी पूर्ति के लिए तो वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वही पे अगर कहीं 8 गाड़ियां हैं, अगर 8 में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 की, 4 से काम चल सकता तो 4 से काम चलाएगा। अपने इन साथियों से भी कि भाई हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई पूल सिस्टम कहीं अगर बन जाए या आपस में किसी के साथ एडजस्टमेंट करके आया जाए, तो लोग बड़े समझदार हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनते भी हैं और उसको अमल में भी लेके आ रहे हो, दिख ही रहा है, नजर आ ही रहा है। इस सारे में मैं भी अपनी तरफ से यही निवेदन करूंगा कि जो भी अनावश्यक चीजें हैं जिनके बिना काम चल सकता है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो कर लेना चाहिए।
1: हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप ने कहा कि आयोग ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
4: हरियाणा योग आयोग ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि हमारी 2 जो स्टाफ कार हैं उनको तत्काल प्रभाव से आज से ही बंद कर दिया गया है और हम आगे जो भी जर्नी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। खाड़ी युद्ध के चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ेगी, खपत बढ़ जाएगी और उससे हमारी आम दिनचर्या की जो जीवन शैली है वो सब प्रभावित होने वाली है। यदि हम सब लोग इस संकल्पना को अपना लें, जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ईंधन की खपत को लेकर, सोने को लेकर और फॉरेन ट्रेवल को लेकर, ये राष्ट्र के हित में है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, यदि हम इस बात को मानते हैं तो हमें इस मुश्किल घड़ी में पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर निर्णय लेना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर बल देना होगा, कुछ समय वर्क फ्रॉम होम करना होगा ताकि न्यूनतम हम खपत पर काम कर सकें और जहां जाना भी पड़े वहां हम कार पूल करके जा पाएं।
1: कलायत में द गर्ल्स गुरुकुल की प्रधानाचार्य भावना चोलिया ने बताया कि गुरुकुल में भी ईंधन बचाने के प्रयास हो रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद सरकार द्वारा ईंधन की खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में हमारा विद्यालय भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। विद्यालय में विद्यार्थियों और स्टाफ को नो व्हीकल डे के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग पैदल, साइकिल या साझा वाहन का उपयोग करें। शिक्षकों द्वारा कार पूलिंग अपनाई जा रही है तथा अभिभावकों को भी बच्चों को साझा वाहन से भेजने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्कूल परिसर में बिजली बचत हेतु स्विच ऑफ अभियान भी चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उपयोग न होने पर पंखे, लाइट्स और अन्य उपकरण तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना भी है। हमें विश्वास है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: अम्बाला में जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने जिले के स्कूलों में ईंधन बचाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
6: हमने अपने स्तर पर सभी बच्चों को और स्कूल मुखियों को ये कहा कि सभी बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वो स्कूल के अंदर जो है स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि पे ना आए, बल्कि उनके घर में जो साइकिलें वो साइकिलों का इस्तेमाल करें। और इसी कड़ी में हमने यहाँ पर कुछ समाज सेवियों से भी बात की है कि जो बच्चे कुछ दूरी से आते हैं घर से और गरीब हैं, वो साइकिल खरीद नहीं सकते, कि क्या उनके लिए साइकिलों की हम उपलब्धता करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक समाज सेवी हैं श्री नरेंद्र सिंह भाटिया जी, उन्होंने हमसे लिस्ट मांगी कि आप एक बार हमें लिस्ट तो दें कि कौन बच्चे ऐसे हैं कि जो गरीब हैं और साइकिल नहीं खरीद सकते, तो हम उनको साइकिल देंगे। तो हमने उनको अम्बाला सिटी और कैंट के आसपास के स्कूलों के 138 बच्चों की लिस्ट दी थी। उन्होंने अभी दो दिन पहले ही हमारे पास इन 138 बच्चों में से 100 बच्चों को जो है साइकिलें उपलब्ध करा दी हैं, और उन्होंने वायदा किया है कि बाकी बचे 38 बच्चों को भी जल्दी ही साइकिल उपलब्ध करा देंगे। तो कोशिश है कि हमारा प्रत्येक बच्चा स्कूल के अंदर साइकिल पे आएगा। हमने उनके माता पिता से भी अपील किया है कि आप भी उनको स्कूटर या मोटरसाइकिल पे ना छोड़ें, ताकि ईंधन की पूरी तरह से बचत हो। हमें लगता है हम काफी ईंधन जो है बचा पाए।
1: पंचकुला में सेक्टर 1 में सरकारी पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल सुश्री शैलजा ने बताया,
7: हमारे कॉलेज में हमने कारपूल इनिशिएटिव शुरू किया है। ईंधन संरक्षण, पेट्रोल और डीजल की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में हमने ये कदम उठाया है। इस पहल से छात्रों और स्टाफ न केवल यात्रा खर्च कम करेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारी सरकार ने ऐसा आह्वान किया है जिसमें हमने भागीदारी करने का प्रयास किया है।
1: कैथल पुलिस विभागीय स्तर पर ईंधन बचाने के अलावा लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रही है। उप पुलिस अधीक्षक गुरविंदर सिंह ने बताया,
8: जिला पुलिस कैथल द्वारा डीएसपी गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कैथल की जनता को इस साइकिल रैली के माध्यम से संदेश दिया है कि आम जन भी ईंधन बचाओ अभियान में अपनी भागीदारी दें, जहां तक संभव हो सके अपनी यात्रा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, अपने किसी आवश्यक कार्य हेतु निजी वाहन का प्रयोग करते समय व्हीकल पूलिंग करके जाएं, इससे ईंधन की भी बचत होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। इसके साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी सप्ताह में 2 दिन कार्यालय जाते समय या तो बस का प्रयोग किया जाएगा या फिर साइकिल से कार्यालय जाया जाएगा, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ईंधन बचाओ अभियान का सपना साकार हो सके।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
9: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
10: भई तो सुने भाइयों ने साप्ताहिक समाचार दर्शन, और ही भाइयों ने एक बातचीत सुनवाओगे। हालांकि बातचीत पूर्व प्रसारित है, लेकिन इस मौके की हर समय पर काम आने वाली है, क्योंकि यूज जो समय चल रहा है इसके लिए अब बहुत जरूरी है। तो सुनिए बातचीत। भाई आज बातचीत करेंगे हमें मिट्टी प्रशिक्षण और उर्वरकों का समुचित प्रबंधन, और विषय पर आज जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में आए हैं। आप हैं डॉक्टर राजपाल यादव, आप कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार
10: जी। डॉक्टर साहब बात करें, देखो अब सही समय है क्योंकि खेत खाली हो जाएंगे।
11: बिल्कुल बलजीत जी,
10: तकरीबन खेत खाली हो जाएंगे, क्योंकि कुछ समय है, देखो पशुओं के लिए हरे चारे की भी जरूरत है, बाकी गेहूँ की कटाई है, सरसों की कटाई होली, और थोड़ा अपने बीच में कुछ समय है अपने पास।
11: बिल्कुल है बलजीत।
10: तो ये मिट्टी परीक्षण, अपने किसान भाइयों को ये बताओ कि मिट्टी प्रशिक्षण हो के है।
11: देखो मिट्टी प्रशिक्षण, जैसे हम सैंपल अपने खून का सैंपल टेस्ट कराते हैं
10: जी,
11: इसी प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर भी हम उसका टेस्ट करवाते हैं, उसकी जाँच करवाते हैं कि उस जमीन में कोई समस्या तो नहीं है, पोषक तत्वों की कोई कमी तो नहीं है, और जो भी हम पोषक तत्व वगैरह डाल रहे हैं वो एक बैलेंस मात्रा में डाल लें।
10: हाँ।
11: क्योंकि उससे ज्यादा डालने से भी देखो सब चीजें लिंक्ड है।
10: हाँ। बिल्कुल,
11: क्योंकि जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले यही है कि जरूरी है कि भाई जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके लिए हमें मिट्टी प्रशिक्षण कराना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। कृषि विभाग के पास, हमारे पास वो है सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं।
10: अच्छा।
11: कृषि विज्ञान केंद्र में भी मिट्टी पानी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं।
10: हाँ।
11: तो वो भी किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करके बता देते हैं कि आपके खेत में इस चीज की कमी है, इसका आप एक समुचित प्रबंध करें, उसके उपाय बता देते हैं।
10: हाँ।
11: कि भाई किस तरीके से हमने उसका खाद का प्रयोग करना है जिससे एक अच्छी पैदावार एक किसान एक ले सके।
10: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब सही समय क्या है इसका जो प्रशिक्षण कराने का?
11: जब भी देखो क्या होता है कि खाद डालने के बाद हमें मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। अगर उसके खेत, अगर उसने बाग लगाना है तो बाग लगाने की प्रक्रिया यही है कि उसको एक 6 फीट का खड्डा खोद दे।
10: हाँ।
11: और फिर उसके 7 सैंपल ले, 2 शुरू के सैंपल 1-1 फीट के अंतराल, आधे आधे फिट के अंतराल पे ले।
10: हाँ।
11: और बाकी के 5 सैंपल 1-1 फीट के अंतराल पे ले।
10: बिल्कुल।
11: और बीच में कहीं उसको 4 फीट पे या 4.5 फीट पे कहीं भी कंकर वगैरह आते हैं तो उनको भी वो छोड़े ना,
10: नोट करे उनको।
11: हाँ, आमतौर पर किसान क्या करता है, उन कंकरों को छोड़ देता है, मिट्टी मिट्टी ले आता है। लेकिन वो कंकर भी लाने अति आवश्यक है क्योंकि उस कंकरों के माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है।
10: हाँ।
11: अगर वो 5% से ज्यादा है तो फिर बाग आपका 3-4 साल 5 साल चलेगा, उसके बाद वो चल नहीं पाता है बलजीत जी, कि वो जो जड़े हैं वो नीचे जा नहीं पाती हैं।
10: बिल्कुल।
11: तो पौधे को अपनी खुराक नहीं मिल पाती है। तो ये बाग लगाने से पहले का वो नमूने लेने की ये विधि थी। तो किसान का मकसद भी क्लियर होना चाहिए,
10: मकसद क्लियर होना चाहिए कि उसने कौन सी फसल लेनी है या फिर बागवानी का
11: बागवानी लगानी है। दूसरा, अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि उसने उसके खेत में नमक है।
10: हाँ।
11: यानी कि क्षारीय मिट्टी है या लवणीय मिट्टी है तो उसने फिर 4 फीट का खड्डा खोदना है, 6 फीट का खड्डा नहीं खोदना है।
10: हाँ।
11: और 1-1 फीट के अंतराल पे वही 4 सैंपल लेने आए लेकर के उसको किसी प्रयोगशाला में देने हैं।
10: हाँ।
11: उसके जांच के आधार पर फिर बता देंगे कि इसके अंदर कितना नमक है, इसका समाधान कैसे है।
10: बिल्कुल।
11: और अगर उसने जर्नल फसलों के लिए, जैसे आगामी अभी वो धान लगाएगा या कपास लगाएगा या आने वाले सीजन में गेहूं लगाना है या जो भी उसने फसल लगानी है उनके पर्पज से, उसने जमीन की ताकत के पर्पज से जांच करानी है तो उसके लिए वो 1/2 फीट पे सैंपल ले, लेकिन एक जगह से ना ले, खेत के 5-7 जगहों से सैंपल ले, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले
10: 5-7 जगह से। सैंपल लेने का एक बार तरीका और बता दो उनको, तरीका किस तरह से ले, एक तो सीधी कसी मार के ले ले आदमी।
11: देखो अंग्रेजी का अक्षर होता है ना वी।
10: हाँ हाँ हा।
11: तो एक कसी दाएं से मारे
10: जी,
11: एक कसी बाएं से मारे, तो अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार का एक एक नुमा खड्डा बन जाता है।
10: हाँ।
11: और उसके बाद वो मिट्टी ना नीचे से ना ले, आमतौर पे किसान क्या करता है नीचे से मिट्टी ले लेता है
10: जी,
11: तो उसको थोड़ा वो ना ले, वो खुरपी की सहायता से पूरी परत ले,
10: पूरी की पूरी परत,
11: एक साइड के से बाई साइड की पूरी परत ले, फिर दाई साइड की पूरी परत ले, वो उस सैंपल को लेके एक साफ से जगह पे या कोई कट्टा बिछा करके कट्टे पे रख दे, वो एक जगह का सैंपल हुआ
10: जी, जी।
11: ऐसे वो 5-7 जगह से ले
10: जी,
11: तो लगभग उसके बाद 2-2.5 किलो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद वो उसको अच्छी तरह मिलाए
10: जी,
11: मिला के उसके 4 हिस्से कर दे, आमने सामने के 2 हिस्से छोड़ दे,
10: अच्छा
11: 2 हिस्से रख ले
10: जी,
11: उसके बाद फिर उसको मिलाए।
10: हाँ।
11: फिर आमने सामने के 2 छोड़ दे।
10: हाँ।
11: और 2 रख ले, फिर उसको मिलाए, इस प्रकार से वो 3-4 बार 4-4 हिस्से बनाए जाए, 2-2 छोड़े जाए, बाकी को वो रखे जाए। जब उसके 1 पाव से 0.5 किलो तक मिट्टी रह जाए।
10: हाँ।
11: उसके बाद एक साफ सुथरे पोलिथीन में डाल ले उस मिट्टी को।
10: हाँ।
11: और अपना नाम पता और सबसे जरूरी बलजीत जी ये है कि वो पहचान चिन्ह लगाए, अगर वो 1 से ज्यादा सैंपल लेके आता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये, जैसे लोकल भाषा में अपने यहाँ नाम रख देते हैं।
10: हाँ।
11: ये नीम वाले खेत का वाले है, ये ट्यूबवेल वाले खेत का है।
10: हाँ, हाँ,
11: तो इस तरीके से लोकल पहचान लिख दे, अगर उसको किला नंबर और खाता नंबर याद है तो वो और भी अच्छी बात है, जिससे बाद में रिपोर्ट जब उसको मिले।
10: हाँ,
11: तो वो कंफ्यूज ना हो,
10: आसानी रह जाए,
11: आसानी रहे उसको समझने में, आसानी रहे।
10: हाँ,
11: तो
10: हाँ,
11: अब जो उसको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा तो उसमें उसको मुख्य तत्व जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास कितनी कितनी मात्रा है उसको ये पता लग जाएगा भाई ये मध्यम दर्जे में है
10: हाँ।
11: या ये ठीक है
10: हाँ।
11: या ये कम है
10: जी।
11: अगर कम है तो वो उसका प्रबंध करने का उसको जो भी एक्सपर्ट है कृषि विज्ञान केंद्र से है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से
10: हाँ।
11: या स्थानीय उसका एडीओ है वो उसको बता देगा। फिर वो एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन करे, ये नहीं कि बार बार, अब अपने यहाँ आमतौर पर मैंने देखा है कि किसान भाई यूरिया और डीएपी डाल लेते हैं,
10: बिल्कुल
11: पोटाश की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं
10: जी।
11: अभी कृषि विभाग ने भी, यूनिवर्सिटियों ने भी, सबने मिलके अभी फार्मरों को काफी जागरूक किया
10: जी।
11: तो अब फार्मर जिंक डालने लग गया, नहीं तो पहले जिंक भी नहीं डालता था। ये सूक्ष्म तत्व है।
10: आमतौर पर खेत में के देखे हैं कि हमने फसल लगा दी, साथ में दूसरा कोई अपना किसान भाई है वो तो मिट्टी प्रशिक्षण करा कर जब अपने खाद पानी दे रहे हैं,
11: बिल्कुल जी,
10: हमने वैसे दे दिया तो उसकी फसल तो अलग होगी। हम उसकी फसल को देखते हुए कि भाई इसकी तो फसल बहुत ठंडी हो रही है, इसने कट्टा यूरिया का ज्यादा मारा,
11: ज्यादा मारा,
10: तो हम एक कट्टे की बजाय दो आम मार दें।
11: हाँ जी,
10: ये दिक्कत आती है
11: इससे जी। देखो जेब पे लोड तो है ही है,
10: बिल्कुल।
11: एक कट्टा आप अगर पैसों के रूप में लेता है ये किसान भाई, जब उसका डेढ़ कट्टे से काम चल जाता
10: हाँ।
11: है, यानी कि एक कट्टे की कीमत में 270 रुपए मान लूं
10: जी,
11: तो उसका जब डेढ़ कट्टे से काम चल रहा है तो उसको दो ढाई तीन कट्टे डालने की कोई आवश्यकता हाँ। नहीं है। और जी यूरिया जो है, नाइट्रोजन एक बड़ा चंचल सा एलिमेंट है, वो जमीन में ठहरता नहीं है, या तो वो उड़ जाएगा या पानी के साथ नीचे चला जाता है, तो उसका वो वेस्ट ही जाता है। पौधे को जितना लेना होता है 5-7 दिन में पौधा ले लेता है,
10: बिल्कुल।
11: और अभी जैसे डीएपी भी अपना यहाँ का किसान डालता है, हरियाणा का किसान है, लेकिन पोटाश बहुत कम लोग डाल रहे हैं। और जो भी अभी लैब में सैंपल वगैरह आ रहे हैं उनमें हमारी जमीनों में पोटाश पहले में उच्च दर्जे का था
10: हाँ।
11: अब मध्यम से कम दर्जे में आ गया है, यानी कि हमें सचेत हो जाना चाहिए किसानों को कि आने वाले समय में इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी
10: जी।
11: तो ये एक मुख्य पोषक तत्व है और इसको अनदेखा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। और ये उनको जब भी पता लगेगा, जब वो अपना मिट्टी पानी प्रशिक्षण वो
10: कराएंगे,
11: प्रशिक्षण कराएंगे, उसके बाद ही ये सारी क्लियर चीजें हो पाएंगी
10: जी। डॉक्टर साहब, कई बार किसान भाई नोडर जहक भाई कदे कि भाई जाओगे दिक्कत आओगी, कितने पैसे लगेंगे, क्यों करके होगा, तो उसके बारे में थोड़ा और बताओ।
11: ऐसा है बलजीत जी, मिट्टी प्रशिक्षण जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट
10: अच्छा, कोई पैसा नहीं लगता,
11: कोई पैसा नहीं लगता किसान का। अगर आप चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कराते हो
10: हाँ।
11: तो वो मात्र लेते हैं 10 रुपए, वो भी एक तरीके का मान सम्मान है
10: जी।
11: क्योंकि एक सैंपल को सरकार का लगभग 450 रुपए लगते हैं उसका एनालिसिस करने में
10: जी।
11: लेकिन वो किसान से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 10 रुपए लेता है, वो भी इसलिए कि किसान की अगर जेब से कुछ निकलेगा
10: हाँ।
11: तो उसको उसकी अहमियत
10: बिल्कुल
11: थोड़ी सी पता लगेगी
10: जी, जी।
11: दूसरा, जो हरियाणा सरकार की जो मिट्टी पानी प्रयोगशाला है इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, आप ले आओ सैंपल को। एक सैंपल को करने में लगभग 7-10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि
10: अच्छा।
11: कई पैरामीटर निकालने होते हैं
10: हाँ, हाँ।
11: पूरा सेट सा लगता है, तो 7-10 दिन बाद किसान भाई को सैंपल दे देते हैं, पोस्ट के द्वारा भी भेज देते हैं
10: जी।
11: और
10: ना तो हर जिले के अंदर अपना जाके भी ले आओ तो और भी बढ़िया है,
11: बिल्कुल जी,
10: हाथों हाथ अगर रिपोर्ट मिल जाए।
11: और जी ये बात भी मैं कहना चाहूंगा यहाँ किसान भाइयों से, ये आपको हर साल या हर बार कराने की जरूरत नहीं है,
10: अच्छा,
11: क्योंकि मिट्टी बड़ी ढीठ प्रवृत्ति की होती है, जल्दी से नहीं बदलती है। तो आप तीन साल के दौरान, साल के बाद आप करवा लो सैंपल, एक जांच जिससे आपको पता चलता रहे कि मेरे खेत की मिट्टी में इस पोषक तत्व की जरूरत है
10: हाँ।
11: उसका आप ध्यान रखें
10: जी।
11: और एक अच्छी पैदावार, एक भरपूर पैदावार लें, जेब से ज्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि कई बार क्या है देखम देख में किसान भाई ज्यादा पैसा लगा देता है।
10: बिल्कुल,
11: मैंने अभी आपको डीएपी का एग्जांपल भी दिया, अगर वो 30 किलो भी बचाता है तो 700 रुपए बच जाते हैं।
10: सही बात है,
11: इस तरीके से वो प्रबंध करें,
10: बिल्कुल। और देखो फसलों के बारे में भी सोचे किसान भाई के भी कौन सी फसल लेनी है, तो उसकी पूरी जानकारी लेके इसमें कितना उर्वरक हमने डालना है,
11: बिल्कुल,
10: उसके आधार पर। अच्छा, फिर बात करें थोड़ा देसी खाद की।
11: हाँ जी,
10: तो देसी खाद भी देखो ये बहुत कम हो गए हैं, पहले की जो तुलना होया करती उससे बहुत कम हो गए।
11: देखो बलजीत जी, वैसे जब हम मिट्टी के प्रशिक्षण करते हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन करके एक पैरामीटर होता है
10: जी,
11: कार्बनिक अंश, तो वो 0.4 होना चाहिए।
10: अच्छा,
11: जब ये हरित क्रांति नहीं आई थी उससे पहले हमारी जमीनों में ये भरपूर था
10: जी।
11: हरित क्रांति के बाद हम सघन खेती करने लग गए, बिल्कुल खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं
10: जी, जी।
11: पशुधन हमारा कम हो गया है, हर गांव में पहले 4-4, 5-5 एक परिवार के पास भैंसे या जानवर हाँ, होते थे हाँ। वो अभी 2-2, 1-1 रह गए हैं, तो गोबर की खाद हमारी बहुत कम हो गई है। इसका अभी एक नया विकल्प है प्राकृतिक खेती, जिसमें हम जीवा अमृत जो गाय के मूत्र से, गोबर से, थोड़ा बहुत बेसन से और ये चीजें डाल के और गुड़ डाल के,
10: अच्छा,
11: हम उन जीवाणुओं का एक तरह से कल्चर होता है वो 15-15 दिन के अंतराल पे हम अगर हमारे खेतों में स्प्रे करते हैं तो पोषक तत्वों की भी पूरी हो जाती है और जो जैविक अंश है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है।
10: सही बात
11: और
10: है।
11: एक पशु लगभग 30 किले की खेती कर सकता है आदमी।
10: जी जी बिल्कुल। और देखो ध्यान हमने ये भी रखना चाहिए कि उर्वरकों का देखो प्रयोग एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता।
11: नहीं नहीं, एकदम से अगर आप करोगे तो आपकी पैदावार किसान भाई की गिर जाएगी।
10: बिल्कुल है, तो धीरे धीरे थोड़ा हमने जीवाणु खाद की ओर,
11: वो जीवाणु खाद जो मैंने आपको बताया जीवा अमृत का स्प्रे है
10: जी,
11: या वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद है, इनको थोड़ा बढ़ाए और इन खादों को पहले साल 25% कम करे, दूसरे साल 50 करे, तीसरे साल 75 करे और चौथे साल से वो धीरे धीरे इनकी उसको जरूरत महसूस होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी जमीन का स्वास्थ्य सुधर जाएगा, जमीन में ताकत आ जाएगी।
10: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे थोड़ा देखो पैदावार पे तो असर शायद होता होगा अगर हम कम करेंगे थोड़ा थोड़ा।
11: थोड़ा थोड़ा नहीं, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ जैविक खादें या केंचुए की खाद डाल रहे हो, गोबर की खाद डाल रहे हो और ये जीवा अमृत का अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो पैदावार पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि खाद आप एकदम से नहीं छोड़ रहे हो।
10: जी, जी,
11: ये आपको जितना वो सप्लीमेंट भी तो दे देंगे ना आपको, उनकी पूर्ति कर देंगी ये खाद,
10: क्योंकि भरम रहता है किसान भाइयों के, भाई देख इतने कट्टे हम ना मारेंगे तो फिर पैदावार में घटोतरी हो जाएगी।
11: नहीं नहीं, उसको ना एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे हर साल कम, इस साल 25% करे, अगले साल 50 करे, फिर 75 करे, तो उसकी जमीन की शक्ति, जो उसकी कुदरती शक्ति है जमीन की, वो उसकी बढ़ती चली जाएगी, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो जो हमारे कुदरती, जैसे किसान क्या करता है कि फसल का ऊपर का हिस्सा तो काट के ले जाता है, नीचे का छोड़ जाता है, वही जीवाणु अगर उस खेत में है तो वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, एक बहुत अच्छी कुदरती खाद बना देते हैं, तो हमें रासायनिक खाद वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
10: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कुछ फसल चक्र का भी कोई चक्र है?
11: फसल चक्र भी देखो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार एक फसल लेने से जो जड़ों की लेंथ है वो वहीं तक जाती है, बार बार वही पोषक तत्व वो जाते हैं तो उनकी कमी आ जाती है। अगर आप फसल चक्र, अब जैसे आपने कोई दलहनी वाली फसल लगाई तो उसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन है, उनके नीचे बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, वो गांठ टाइप में आपने देखे भी होंगे
10: जड़ों की
11: गांठों में, तो वो क्या करते हैं कि जो हमारी कुदरती नाइट्रोजन को कुदरती तौर पे जमीन के अंदर वो ले जाते हैं, तो वो एक बैलेंस सा बना देते हैं। तो बार बार ये भी है कि बार बार एक फसल न लगाओ तो उससे बीमारियां भी नहीं आती, जो मिट्टी में जो अंडे रह जाते हैं बार बार, तो वो उस फसल के जड़ों को अटैक करते हैं या उस फसल पे वो, तो वो हानिकारक कीट जो होते हैं उनका प्रबंधन भी हो जाता है।
10: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें कुछ खाली समय पे गहरी जुताई का भी कोई महत्व बता जाता है?
11: खाली समय पे वैसे गहरी जुताई करने से मैंने तो आपको ये बताया कि थोड़ा सा जो सोलराइजेशन, जो धूप की तपत होती है, उससे जो जीवाणु होते हैं वो थोड़े से खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी साइंस का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भैया मैं थोड़ी जमीन को ज्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि बरसात उसके बाद आती है तो जो हमारी उपज वाली ताकतवर जमीन के जो वो हैं वो बह जाते हैं खेत से। देखो ना, आप अगर एक चीज का फायदा मिल रहा है तो दूसरी ओर किसान भाई को इनडायरेक्टली थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा है कि भाई उससे जो हमारे ऊपर की परत में सबसे ज्यादा ताकत होती है जमीन की, वो हिल जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, तो अगर बरसात आती है तो उसके पानी के बहाव के साथ वो उसकी जो शक्ति होती है वो भी थोड़ी सी बह जाती है।
10: बिल्कुल, देखो पहले तो जमीन ज्यादा होया करती, आदमी कम होया करते, साडू सामणू भी छोड़ दिया करते, लेकिन आजकल तो धरती ने सांसें नहीं लेने दे
11: रही। अब हम विश्व के पॉपुलेशन में एक नंबर पे आ गए हैं।
10: बिल्कुल,
11: और जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया था वो उतना ही तो है, वो थोड़ी ना बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, एरिया नहीं बढ़ा, एरिया तो भारत का उतना ही है।
10: बिल्कुल, तो इस कारण देखो मिट्टी परीक्षण देखो कितना जरूरी है,
11: बहुत
10: और
11: जरूरी
10: किसान
11: है।
10: भाई थोड़ा इसको लापरवाही से ले, हाँ जागरूक किसान है, किसान मेला में जावे हैं जो वो जागरूक हैं और कराओ भी है मिट्टी परीक्षण, लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई थोड़ी कोताही बरत जाए तो देखा कि कितना जरूरी हो जाता है अपने खर्चे को बचाने के लिए भी, अपनी जमीन की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी और आगे के लिए। डॉक्टर साहब उसके लिए रिकॉर्ड भी बन गया है और हर साल कराना भी जरूरी नहीं,
11: हर साल कराना कोई जरूरी नहीं है, 3 साल में आप करा लो, आपको पता लग जाता है, आप अच्छा खादों का प्रबंध कर लेते हो, एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन फसल को मिल जाता है और आपकी जेब पे भी ज्यादा लोड नहीं आता।
10: बिल्कुल, बिल्कुल।
11: और आने वाला टाइम यही है कि अगर आपने पैदावार या इनकम बढ़ानी है तो आपने जो फसल के खर्चे हैं ना उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा, उनको कम से कम करना पड़ेगा।
10: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। आखिर में मिट्टी परीक्षण को जो है लेकर किसान भाइयों को किस प्रकार से आप कुछ संदेश देना चाहोगे?
11: मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूंगा कि अब जो ये सावणी फसल आप बोओगे उससे पहले आप अपने नज़दीक के अब आपके खेत खाली हैं।
10: हाँ।
11: अब मैं रास्ते में भी आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कोई बच रहा है गेहूं के, अदरवाइज सारे खेत खाली हैं। अब आप थोड़ी सी लापरवाही ना बरतें, एक बार अपना सैंपल ले लें। सैंपल लेके नजदीक जो भी आपके पड़ती है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मिट्टी पानी प्रयोगशाला है, वहां आप जमा करा दें और 7 से 10 दिन में आप उसको कलेक्ट करें तो आने वाली फसल का आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि भी हाँ जी ये चीजें बिल्कुल राइट है। पड़ोसी साथी है, किसान भाई है, उनको भी थोड़ा सा बताओ कि भाई वो भी करवाएं
10: जी,
11: तो एक अच्छी पैदावार, एक अच्छे स्वास्थ्य का, मिट्टी के स्वास्थ्य का हम ध्यान वो रख सकते हैं।
10: और उर्वरकों का भी थोड़ा ध्यान रखें,
11: उर्वरकों का भी जी जहाँ जरूरत है वहाँ डालो
10: जी जी,
11: अननेसेसरी ज्यादा डालना वो मिट्टी की सेहत का नुकसान है। वही उर्वरक बह के पानी में जाता है तो हमारे पानी का पोल्यूशन भी होता है, वही रासायनिक हमारे वातावरण में जाता है तो हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है ये, और हमारी हेल्थ भी, पशु की हेल्थ भी, सब चीजें ये लिंक्ड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
10: बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर है,
11: निर्भर है।
10: ज्यादा उर्वरक डालेंगे देखो सब्जियां की क्वालिटी खराब होती चली गई, खाने की क्वालिटी खराब होती चली गई, कारण यह है कि हम निरा रासायनिक खाद्य खाने लग रहे हैं।
11: यस हाँ जी,
10: तो थोड़ा इस पर अंकुश लगाएं, मिट्टी परीक्षण के द्वारा इस पर अंकुश लग सके हैं, जिस फसल के लिए जितना सिफारिश शुदा मात्रा में खाद बताया जाए तो उससे का प्रयोग करें।
11: हाँ जी, और जो रिपोर्ट जो आपको देंगे ना वो भी आपको उसको पढ़ोगे तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारे ब्लड सैंपल के लेते हैं तो बताते हैं कि हमारी रिजल्ट ये आया, इतना होना चाहिए। तो आप अगर कोई समझदार किसान भाई भी देखेगा, चलो ना, नहीं तो पोते पोतियां आजकल बड़े एडवांस हो रहे हैं, वो भी आपको देख के मतलब बता देंगे कि भाई इसमें ये कमी है बाबा या ये कमी है ताऊ जी, तो आप उसी हिसाब से या किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हो। एडीओज हैं, एसडीओ हैं, डीडीए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण हैं
10: जी। तो डॉक्टर राजपाल यादव जी, आप स्टूडियो मायर किसान भाइयों के साथ इतनी सरल भाषा में आपने उनको समझाने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
11: बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी, राम राम साहब।
10: राम राम। अश्विनी भाइयों ने बातचीत और इससे के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का समय आड़े समाप्त। आगे सुनोगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
12: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
13: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
12: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
10: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र और ये सुनोगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार में देखो कृषि जगत में भी बात चल रही थी, भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़न लाग रही है, जेठ का महीना चल रहा है और इसमें जो है अपना भी पशुधन का भी, अपने बच्चों का, खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका हमने खास ख्याल रखना है। गर्मी तो लू तो बचाने हैं, खाने पीने में बड़ी सावधानी बरतनी है और देखो कोई भाई जो अपना खुद का रोज़गार चलाना चाहे है या चला रहे हैं उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, कौन सी का हमने लाभ मिल सके है और किस तरीके का हम लाभ ले सके हैं। इससे के साथ में फिर बच्चों पर फिर लौटकाए हैं कि भाई बच्चे जो है उनको पता नहीं होता इतनी धूप में भी खेलने जाएँ तो उनका, उनके माँ बाप ने बड़ा ने ध्यान रखना पड़ेगा और साथ साथ में ध्यान यूँ भी रखना पड़ेगा कि भाई बच्चा का टीकाकरण के बारे में भी, भाई कौन सा टीका कब लगना है, कब लगवाना है, कितने टीके लाग दिए छोटे बच्चों के, कितने रह रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर भैया ने एक बातचीत सुनवाऊँगे। हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है लेकिन भाई काम आन की है तो पहले सुनिए बातचीत।
14: भाई, आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा टीकाकरण कब, क्यों और कैसे, और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप सिंह जी को। आप ASMO हैं सिविल अस्पताल रोहतक में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
15: धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।
14: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे कि जो टीकाकरण है इसकी आवश्यकता क्यों रहती है, क्योंकि अगर पुराने समय की बात करें तो लोग अपना खाते पीते थे, मस्त रहते थे, और टीकाकरण की कभी इस तरह की कोई बात सुनने में नहीं आती थी, तो ये किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई?
15: देखिए जी, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के स्लोगन के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
14: जी,
15: ये काफ़ी बीमारियों के लिए फ्री हमें टीकाकरण करती है, जिसमें एक से लेके 16 साल के बच्चों का ये प्रोग्राम है जिनको टीकाकरण होता है। जैसे आपने पूछा कि टीकाकरण क्यों करवाना जरूरी
14: जी,
15: है
14: जी।
15: बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सर, जो कि ऐसी बीमारियां जिनसे जैसे टीबी है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, और बाकी भी अन्य बीमारियां के जो लाइलाज बीमारियां हो गई थी। तो बीमारी, जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, के बीमारी होने से पहले अगर उसका बचाव है
14: जी,
15: वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी कड़ी में सरकार ने ये वैक्सीन जो हैं, टीकाकरण है, ये शुरू किया ताकि बीमारी होने से पहले ही उसका बचाव किया जाए और लाइलाज बीमारियों से बचा जा सके।
14: बीमारी आ जाती है तो फिर इनका रोकथाम करना, इनका बचाव करना बहुत मुश्किल होता है
15: जी।
14: तो उसका यही तरीका है कि हम पहले ही उसका टीकाकरण
15: कर
14: जी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये टीका है, ये लगाए जाते हैं?
15: देखिए जी, ये जैसे अगर हम बच्चे के जन्म से अगर देखें तो पहले दिन जन्म के जो पहले टीके लगते हैं वो टीबी के लिए BCG
14: जी,
15: हेपेटाइटिस बी और पोलियो का, ये हम दवाइयां हैं जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, बाकी टीके लगते हैं। उसके बाद एक शेड्यूल बना हुआ है, एक सरकार ने निर्धारित समय पे, जैसे 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे
14: जी,
15: फिर 9 महीने पे
14: जी,
15: फिर 1.5 साल पे, फिर 5 साल पे, 10 साल पे, फिर 16 साल पे। इस शेड्यूल के तहत बच्चों का टीकाकरण होता है, अलग अलग टीके अलग अलग समय पे लगते हैं
14: जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जन्म के समय पर ही
15: जी,
14: तो ये जन्म के कितने समय के बाद तक ये जो पहला टीका ये लगवाया जा सकता है?
15: देखिए जी, जन्म के जो सरकार की गाइडलाइंस हैं
14: जी,
15: वो जन्म के, हमारी कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर ये तीनों जो दवाइयां हैं ये बच्चे को दे दी जाएं
14: जी,
15: जिसमें से BCG और जो OPV है, OPV माने पोलियो की वैक्सीन
14: जी,
15: ये बच्चे को हर टीकाकरण के शेड्यूल में जैसे जहाँ जहाँ देना है, ये 5 साल तक बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन ये तीनों दे दिए जाएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर हमें हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे को देना होता है
14: जी। डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस का जिक्र किया तो इसमें तो कई तरह की होती हैं, ABCD इस तरह से, तो ये आपने विशेष रूप से बताया कि बी है वही दिया जाता है, तो इस, ये कुछ ज़्यादा गंभीर बीमारी
15: जी? गंभीर बीमारी है जी, हेपेटाइटिस बी जो है ये दिमाग पे भी असर करती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है
14: जी।
15: हेपेटाइटिस बी की बीमारी ये अब 24 घंटे में ही क्यों दी जाती है? माँ के जो बीमारियाँ हमारे अंदर, जो ऐसी कई लक्षण होते हैं जो क्लिनिकली बाहर नहीं आते, लेकिन हम हमारे अंदर वो बीमारियाँ होती हैं
14: जी।
15: तो जिसे जैसे माँ के साथ एक नाड़ी के साथ बच्चे का
14: गर्भ नाल जुड़ी होती है जी, जी।
15: तो उस नाड़ी के से कुछ ऐसी अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ बीमारियां भी ट्रांसमिशन होती
14: कुछ है, कुछ जीवाणु हैं वो
15: उसमें, जो उसमें चले जाते हैं
14: जी।
15: तो ये इसका जो सरकार ये समझ, जो मेडिकल फील्ड ये समझती है कि 24 घंटे के अंदर अगर हम नहीं देंगे तो उसका जितना भी असर थोड़ा या ज्यादा वो माँ से ट्रांसमिट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए 24 घंटे, रिसर्च ये कहती है कि 24 घंटे के अंदर अगर हम देंगे तो उसको रोकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है
14: जी।
15: तो इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जो ये हेपेटाइटिस का टीका है वो लगवाना बड़ा अनिवार्य है
14: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि गांव में दूर कहीं रह रहे हैं, वहाँ जन्म होता है बच्चे का
15: जी,
14: तो उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होता है नज़दीक सी, तो उनको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए?
15: देखिए जी, वैसे तो सरकार की कोशिश ये है कि 100% जो जन्म हैं वो हमारी संस्थाओं के अंदर हों, लेकिन फिर भी जो दूर दराज के एरियाज में कोई बच्चे ऐसे हैं जो एमरजेंसी में पैदा हो गए या कई अपनी भ्रांतियों के कारण अस्पताल नहीं जाते
14: जी,
15: तो उस केस में हमारी कैचअप प्रोग्राम्स हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। आउटरीच प्रोग्राम से मतलब है कि हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, हमारी जो स्टाफ हैं वो भट्टों पे, डेरों पे या कोई भी ऐसी जो जगहें हैं जो दूर दराज हैं, डिस्पेंसरियों से हमारे दूर है, वहाँ पे प्रोग्राम हमारे निरंतर चलते हैं और घर घर विजिट किया जाता है। फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो टीकाकरण से वंचित रह जाए तो हमारे सेंटर्स पे हर दिन टीकाकरण, कोई भी बच्चा किसी भी समय वर्किंग आवर्स में जाए तो उसे टीका अवेलेबल रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है।
14: जी, मतलब किसी प्रकार का कोई शुल्क
15: नहीं लिया जाता।
14: डॉक्टर साहब, क्या इस तरह की कोई सुविधा है, कोई नंबर इस तरह का हो जहाँ पे संपर्क किया जा सके, भई हम बच्चा बीमार है या जो महिला है, माता है, वो बीमार है, नहीं आ सकते, तो उनको वहाँ पर वो इंजेक्शन है, वो दवाई उपलब्ध हो जाए?
15: हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो हर एक गांव में आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, हमारी डिस्पेंसरियाँ हैं, तो हमें जैसे हमारे पास एक इन वर्कर्स के पास लाइन लिस्ट भी होती है, एक लिस्ट होती है बकायदा के कौन कौन से घर में कब बच्चा पैदा हुआ। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम घर घर ये डाटा कलेक्ट करें कि कोई बच्चा इससे अछूत ना रह जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए।
14: जी, जी।
15: तो हम हमारी कोशिश तो ये रहती है। फिर भी अगर कोई बच जाए तो वो डिस्पेंसरी पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बहन जी जो हमारी लोकल लेवल पे होती है उनको बता सकते हैं। तो हमारा ये सरकार की तरफ से ही हमें हिदायतें हैं कि हमने हर बच्चे को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो कितने भी मुश्किल एरिया में रहती हो।
14: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि एक बार कोई दवाई दे दी जाती है, खुराक दे दी जाती है, तो उसके बाद में दूसरी दी जानी जरूरी होती है।
15: जी,
14: तो इस तरह की कौन कौन सी और दवाइयाँ हैं जो कि दी जानी चाहिए इंजेक्शन?
15: सर, जैसे देखिए जी, जैसे मैंने जन्म पे बात करी थी कि टीबी का टीका लगता है, BCG जैसे कहते हैं, पोलियो का, हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद फिर हमें निमोनिया का जैसे लेके PCV का टीका लगता है, 6 हफ्ते से वो शुरू होता है। उसके बाद एक टीका है पेंटावेलेंट जिसे कहते हैं। पेंटावेलेंट के अंदर 5 तरह की दवाइयाँ रहती हैं जी, 5 तरह की दवाइयाँ, उसमें DPT
14: जिसमें
15: काली खांसी है, गलगोटू है और टेटनस का, ये 3 तरह के टीके DPT में होते हैं, और हेपेटाइटिस बी और एक होती है इन्फ्लुएंजा की, हिब कहते हैं उसे, उसमें इन्फ्लुएंजा बी स्ट्रेन का जो टीका है, ये 5 तरह के जो बीमारियों के लिए एक ही टीका जिसे पेंटावेलेंट कहते हैं। उसके बाद FIPV जिसे हम कहते हैं, फ्रैक्शनल IPV, वो भी पोलियो के लिए, पहले तो पोलियो के बूंदे पिलाई जाती थी, अब पोलियो के बूंदों के साथ साथ टीकाकरण भी पोलियो का सरकार ने शुरू कर दिया है।
14: अच्छा।
15: और साथ में जो ये डायरिया जिसे हम जुलाब कहते हैं उससे बचने के लिए रोटा वायरस का टीका है, वो हमें लगवाना बड़ा जरूरी है, बूंदे हैं सॉरी रोटा वायरस की
14: जी।
15: फिर 10वें हफ्ते पे भी सेम, 14वें हफ्ते पे भी सेम, फिर हमारा 9वें महीने पे MR1 मीजल रुबेला, हम जिसे खसरे की बीमारी कहते हैं
14: जी,
15: उसका टीका लगता है जी, और विटामिन ए पिलाई जाती है। उसके बाद 1.5 साल पे हमारे पोलियो दी जाती है, DPT का बूस्टर दिया जाता है, पहले जो पेंटा में DPT लग जाता है उसके बाद इसका बूस्टर डोज दिया जाता है, ताकि जो एंटीबॉडीज हमारे लड़ने के जो जीवाणु हमारे अंदर क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, उस दवाई को बरकरार रखने के लिए उसका जो असर है वो बूस्टर डोज लगता है, और MR की जो खसरे की सेकेंड डोज है वो लगती है, और विटामिन ए पिलाया जाता है। फिर 1.5 साल के बाद जी 5 साल पे हम DPT का एक बूस्टर देते हैं और OPV देते हैं साथ में, और 10 से 16 साल की उम्र के बीच, 10 और 16 साल पे हम TD देते हैं जी, टेटनस और डिप्थीरिया की हम डोज देते हैं
14: जी। यानी कि 15-16 साल तक के बच्चे के लिए ये जरूरी है
15: जी।
14: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि जो समय निर्धारित किया जाता है वो ऊपर चला जाता है या ध्यान नहीं रहता है, तो उस स्थिति में क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है
15: जी? ये देखो, सरकार ने सहूलियत के लिए, मतलब जो जिस समय पर बच्चे पे असर आता है उसका एक शेड्यूल बना रखा है
14: जी,
15: लेकिन कुछ वजह से अगर बच्चों को हम नहीं लगवा पाए तो उस केस में बच्चा 1 साल तक, जो 1 साल के अंदर अंदर लगने वाली दवाइयां हैं वो कभी भी आए, बच्चे का टीकाकरण हमारे को जिस जो हिदायतें हैं, हिदायतों के अनुसार हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं
14: जी।
15: और 5 साल के तक, जैसे जो 5 साल तक की दवाइयां हैं, पोलियो की दवाई है, DPT की, डिप्थीरिया पर्टूसिस, काली खांसी, गलगोटू वाली, इनकी दवाइयाँ हैं, ये हम उनको वैक्सीन के तौर पर देते हैं
14: जी डॉक्टर साहब, क्या कोई कार्ड वगैरह या कोई लिखित में इस तरह का देते ताकि जो माता पिता है उनको ध्यान रहे कि हमें अगला टीका कब लगवाना है?
15: बिल्कुल, आपने बड़ा ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये हम MCP कार्ड कहते हैं जिसे, मटर्नल एंड चाइल्ड, इसका जो हमारा ट्रैकिंग का कार्ड है
14: जी,
15: वो हमारा जो है जनरेट होता है पहले दिन से, जब हमें ये पता चलता है कि कोई भी महिला गर्भवती हो गई है
14: जी,
15: उसका एक कार्ड, एक स्पेसिफिक नंबर है, जैसे आधार कार्ड बनता है ऐसे ही एक MCTS नंबर, मटर्नल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम नंबर है
14: जी,
15: वो हम जनरेट करते हैं उसके आधार से लिंक करके। तो एक कॉपी की तरह, कॉपी नुमा एक हमारा कार्ड है
14: जी,
15: जो वो जनरेट होता है, जिसके अंदर माँ की भी टीकाकरण और बच्चे का भी टीकाकरण दर्ज किया जाता है, बच्चे का वजन दर्ज किया जाता है समय दर समय, और उसमें सारी डिटेल्स दर्ज की जाती हैं। वो अपने पास लोग, जितने भी माएँ हैं या उनके जो भी केयर टेकर हैं बच्चों के, वो अपने पास संभाल के रखें ताकि जब अगला टीकाकरण करने जाएं तो ये रिकॉर्ड हमारे पास भी रहे कि कौन कौन सी बच्चे को वैक्सीन ड्यू है
14: जी।
15: और दूसरा, इसको और भी तकनीकीकरण करने के लिए सरकार ने आजकल एक डिजिटल पोर्टल शुरू करा है, यूविन।
14: अच्छा,
15: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का वो पोर्टल है, आधार लिंक्ड है, जो भी टीकाकरण होएगा वो यूविन के ऊपर दर्ज होता हो जाता है, ताकि हमें नंबर वो डाल के ये पता लग जाता है कि कौन सी वैक्सीन लग चुकी है और कौन सी ड्यू है
14: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि कुछ नौकरी पेशा लोग हैं या घुमंतु हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनका भी ट्रैक हो जाता है, उनका भी पता चल जाता है कि इस माध्यम से।
15: बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑल इंडिया लेवल का नंबर है जी,
14: जी।
15: ये ऑल इंडिया का नंबर है और इसमें कहीं भी किसी भी देश के किसी भी खित्ते में किसी भी हिस्से में जाएंगे वो नंबर से ये ट्रैक हो जाएगा
14: जी, यानी कि उनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है,
15: कोई जरूरत नहीं है। देखो, हमारा मानना तो ये होता है कि कॉपी फिर भी संभाल के
14: रखनी चाहिए,
15: लेकिन सरकार ने इस से भी और इसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए सरकार ने जो ये नंबर जनरेट करे, हाँ आप ऑल इंडिया लेवल पे जहां भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इस नंबर को भरेंगे तो उससे सारी डिटेल बच्चे की या उसकी माँ की खुल जाएगी
14: जी। अब डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ शंका रहती हैं कि बच्चा अगर बीमार है, बुखार है, उसको तो दवाई या इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए।
15: देखिए, कुछ बीमारियों में कुछ जो ये दवाइयाँ हैं कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, सलाह नहीं दी जाती
14: जी।
15: वो आम तौर पे सब बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि किस बच्चे को वो दवाई देनी है या नहीं देनी। खुद से कोई भी ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि बच्चे को वैक्सीन नहीं दिलानी। जैसे अगर तेज़ बुखार हो
14: जी,
15: कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें सर्जरी हुई हो बच्चे की, या कोई ऐसी पेट से रिलेटेड बीमारी हो या वैसे कोई बीमारी हो जिसमें बच्चा ICU में या गंभीर रूप से बीमार है
14: जी,
15: तो सिर्फ उन केसेस में हम बच्चे को ये रेकमेंड करते हैं कि वैक्सीन ना लगवाई। दूसरी बात, किसी भी एक वैक्सीन जो होती है, जो ये हमारी दवाइयां हैं टीकाकरण के रूप में या हो, उसके किसी एक कंटेंट से, किसी एक उसके
14: अंश से
15: एलर्जी हो
14: जी, जी।
15: तो वो, लेकिन एलर्जी का पता तब लगेगा जब बच्चे को एक बार दो बार दी जाएगी
14: जी।
15: तो एलर्जी हो उसमें भी हम ये टीकाकरण बंद कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक एक दवाई है वो बच्चे को नहीं दी जाएगी
14: जी। डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आया है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसको पीलिया की शिकायत हो जाती है
15: जी,
14: तो क्या उस स्थिति में इंजेक्शन लगवा सकते हैं?
15: पीलिया एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जी, नॉर्मल प्रोसेस है
14: जी।
15: वो अमूमन बच्चों को पीलिया होना ही होना है
14: जी।
15: तो पीलिए से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना समा लेके 5-7-10-15 दिन में पीलिया डाउन आ जाता है, नहीं आता तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन उसका दवाई से, टीकाकरण से डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि जो टीकाकरण है वो उसको कम करने में मदद करता है
14: जी। यानी कि अगर टीका समय पर लगाया जाए तो वो जो पीलिया हुआ है
15: हाँ,
14: वो भी ठीक होने की
15: संभावना बढ़ जाती है
14: जी। डॉक्टर साहब, इसमें कई बार ये होता है जैसे पीलिया के लिए अलग से ड्राइव चलाई जाती है या दिन विशेष रखा जाता है
15: जी,
14: तो उसमें भी बच्चे को पिलवाना जरूरी होता
15: बहुत
14: है?
15: बहुत जरूरी है जी,
14: जी।
15: ये ड्राइव चलाई ही इसलिए जाती है, अगर हम देखें कि ये ड्राइव्स क्यों चलाई जाती हैं, हमारी भाषा में इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है जी,
14: झुंड में या बहुत सारे लोग,
15: अगर बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी लड़ने की क्षमता हो जाएगी
14: जी।
15: तो वो बीमारी की क्षमता खुद ब खुद कम हो जाएगी लोगों को बीमार करने के लिए
14: जी।
15: तो इसीलिए ये ड्राइव्स लाई जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर हम कंप्लीट कर सकें, टीकाकरण कर सकें, ताकि हम उस जो फैलाव करने की कड़ी है उसको तोड़ सकें और इसका फैलाव रोक सकें
14: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये है कि कुछ हमारे समुदाय इस तरह के हैं जिनका कि ये मानना रहता है कि भाई हमने ये दवाई पिलवा दी या ये इंजेक्शन लगवा दिया तो ये कहीं आगे उसको दिक्कत ना आ जाए या आगे बढ़ा हो के कोई समस्या ना बने, तो इस तरह की भ्रांति रहती है।
15: देखिए, रहती है कोई मैं हर एक समाज की हर एक लोगों की अपनी अपनी मानने की वो है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर आप मेरे को डॉक्टर होने के नाते पूछेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी इसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है
14: जी।
15: स्पेसिफिक किसी बच्चे पे, लाखों में एक बच्चे को इसका कोई रिएक्शन होता है
14: जी,
15: तो उसका भी इलाज है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये दवाइयों से कोई बच्चे का नुकसान हो रहा है या कोई बच्चे का नुकसान करने की जानबूझ के कोशिश की जा रही है, तो ये सब भ्रांति है, ये गलत है, ये मानना बहुत गलत है
14: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि पेट के कीड़ों के लिए भी टेबलेट दी जाती है, दी जाते हैं, एल्बेंडाजोल है, तो उसमें एक आध बार ये भी सुनने में आया कि बच्चों ने वो ली और उनसे उनको कुछ पेट दर्द, इस तरह की शिकायत सुनने में आई
15: जी।
14: तो उसमें कहाँ कुछ कमी रहती है?
15: सर, कमी कोई नहीं है जी, हर एक दवाई का छोटा या बड़ा कोई साइड इफेक्ट होता है
14: जी।
15: किसी पे साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, किसी पे कम होता है। लेकिन अगर हम इसको मोटे तौर पे या ये देखें कि रिसर्च के तौर पे देखें तो लाखों में से सिर्फ एक या दो बच्चे को रिएक्शन होता है
14: जी।
15: वो पैनिक अटैक कहते हैं इसे, कि अगर एक बच्चे को हुई तो सबको बच्चे को देखा देख पेट दर्द होने लग जाता है। तो
14: जी,
15: इस वजह से ये ज़्यादा फैलाव में बातें आ जाती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इससे कोई पेट दर्द या ऐसी कोई गंभीर बीमारी होती है
14: जी।
15: पेट को साफ करने के लिए, पेट के कीड़े साफ करने के लिए ही एल्बेंडाजोल दी जाती है
14: जी।
15: तो उसी को वो उसी पे एक्ट करके उसने काम करना है जी।
14: जी डॉक्टर साहब, एक दो बात और जानना चाहेंगे कि अगर बच्चों को हम ये इंजेक्शन, टीका या दवाई दिलवा रहे हैं तो उससे पहले क्या एहतियात रखनी चाहिए? उनको बच्चों को खाना खाना चाहिए या नहीं, या खाली पेट रहना चाहिए, कोई इस तरह की कोई आपके निर्देश है?
15: कोई ऐसा निर्देश नहीं है जी, खाना खा के ही बच्चे को अपना टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि कई इसमें टीकाकरण के बाद बुखार चढ़ता है
14: जी।
15: कई हमारी वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें बुखार चढ़ता है
14: जी।
15: तो बुखार चढ़ने से पहले बच्चा टीका लगवाने के बाद रोएगा भी
14: जी।
15: तो उस केस में अगर खाना पी के, माँ का दूध पी के बच्चा लगवाएगा तो अगर रो के सो भी जाएगा तो ज़्यादा देर बच्चा खाली पेट नहीं रहेगा। तो हमारे सलाह के हिसाब से तो बच्चे को दूध पिला के, खाना खिला के ही टीकाकरण करवाएं, ताकि उसके बाद अगर वो रोए, बुखार हो, तो दवाई भी हम उसको दे सकें
14: जी। अब डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये जानकारी और चाहेंगे कि जैसे आपने बताया 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए तो ये टीकाकरण है, उससे बड़े व्यक्ति हैं क्या उनके लिए भी किसी तरह का टीकाकरण?
15: देखिए, उनमें हमारे जो आज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सरकार एक HPV पेपिलोमा वायरस है जो लड़कियों में इस वायरस को बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए सरकार की अभी एक वैक्सीन तैयार जो लूप में है, वो आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर जो है उससे बचाने के लिए सरकार इस तरफ प्रयास कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को भी लाया जाए
14: जी।
15: दूसरा जो आपने कहा 16 साल से बड़े बच्चों के लिए, उसमें आयरन का हमारी दवाइयां जो सरकार है वो फ्री लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो एडोलसेंट लो तत्व जो एडोलसेंट एज के बच्चे हैं उनके लिए, गर्भवती होने की जो उम्र में आ गई है उन लेडीज के लिए जो गर्भवती हैं उनके लिए, और स्पेसिफिकली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दो टीके गर्भ अवस्था में TD के लगते हैं, टेटनस और डिप्थीरिया के लगते हैं
14: जी,
15: एक महीने के अंतराल पे
14: जी।
15: तो वो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसको पहली डोज और एक महीने के अंतराल पे दूसरी डोज दी जा सके
14: जी। तो डॉक्टर साहब, कोई और विशेष आपकी कोई अभी कोई ड्राइव चल रही हो, कोई और विशेष अभियान चल रहा हो?
15: जी, हमारा ये जो अभियान है ये खसरा को ख़त्म करने के लिए सरकार ने बड़ा अपना टारगेट बनाया, 2025 के अंत तक ये पोलियो की तर्ज पे हमें देश से निकालना चाहते हैं इस बीमारी को
14: जी।
15: तो उसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, ICDS डिपार्टमेंट भी बड़े वॉर फुटिंग पे इस पे काम कर रहे हैं कि सब बच्चे इस वैक्सीन को लें। तो हमारा आपके श्रोताओं से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मैं आग्रह करूँगा कि किसी भी बच्चे को अगर MR1 और 2 का अगर टीकाकरण ना हुआ हो तो हमारे जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो टीके हैं वो लगते हैं, और ये गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए माँ बाप भी अपने खुद से भी ये इनिशिएटिव लें और खुद आकर के टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि आपका बच्चा ही नहीं औरों के भी बच्चे इस ट्रांसमिशन से बच सकें, इस संक्रमण से बच सकें।
14: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और देश की धरोहर है ये,
15: धरोहर
14: तो
15: जी,
14: आगामी जो हमारे जो समय है उसके कर्णधार है, तो वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
15: धन्यवाद
10: बेहद अश्विनी भैया ने बातचीत, और ही भैया का कराऊंगे मनोरंजन।

0: भाई आपको एक रागनी सुनवाओगे, गायक कलाकार होंगे बलवान सिंह और उनके साथी।
1: बोली सैम है करो सो।

और भाई बलवान सिंह और साथियों की गाई और इस रागनी के साथ है एक देख लिया हाँ घड़ी का नया कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाज़त, सारे बण भाइयों ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मुकद्दर का सिकंदर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना कार्यक्रम के आरंभ में। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं काला पत्थर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के बोलों को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

साहिर का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था काला पत्थर। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में महबूबा फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत से सवारा है इस गीत को राहुल देव बर्मन ने।

महबूबा फिल्म से सुना आपने ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, प्रेम कहानी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपने सुना प्रेम कहानी फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। मोहब्बत फिल्म से कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंदिवर के बोल हैं, धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

मोहब्बत फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, इंदिवर के बोल थे, बप्पी लहरी का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में पिया का घर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में पिया का घर फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अनजाना फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनजाना फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में गीत, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं खानदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। नक्श लायलपुरी के बोलों को संगीत दिया है खय्याम ने। आइए सुनते हैं ये गीत खानदान फिल्म से।

खानदान फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। नक्श लायलपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मेला फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना मेला फिल्म से ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गीत। गीत के बोल लिखे हैं कतील शिफाई ने और संगीतकार हैं उत्तम जगदीश। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं पामिला सिंह की गाई गज़लें। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति पामिला सिंह की आवाज़ में।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं पामिला सिंह की गाई गजलें।

0: इसी प्रस्तुति के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपने पामेला सिंह की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
4: अमेरिका एंड इंडिया,
5: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं आपके साथ फिल्म से चुनिंदा गीत।

0: स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
1: हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
0: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
1: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था बांदा में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्टल एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
0: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
1: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव चलते बहुत सारे कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
0: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
1: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं, हमारे जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
0: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
1: देश की बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये 3 राज्य जो है पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5 छह दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा।

0: दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है। तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अर्बन हीट आइलैंड, देखो ज्यादातर शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से। तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा, तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है, तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, कभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण, काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से

0: बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है। एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण। बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है। तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है। एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मानसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मानसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा, ये हमारा जो फोरकास्ट। उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सकें।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सारे अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउकास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: मन चाहे गीत। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम मन चाहे गीत में आप सबका स्वागत है।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना कार्यक्रम का ये पहला गीत प्रेम पुजारी फिल्म से। गीत के बोल लिखे थे नीरज ने और संगीत दिया था इस गीत को एस डी बर्मन ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं गैम्बलर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतकार एक बार फिर से नीरज हैं और संगीत दिया है एस डी बर्मन ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, काकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरित पोपलवाड़, संकर्षा और संविधान होगड़े, बेमित्रा से सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी, अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भुविक, भड़बुंजी आगरा मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष और ओम प्रकाश, चरडोंगरी विपरिया से मध्य प्रदेश से दुर्गा राम साहू, चरखी दादरी से जगनेश सांगवान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सोनिया कालका, बिपाशा शर्मा, नरेंद्र तनेजा, मीनाक्षी तिवारी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ और प्रेमलता, बागपत यूपी से एहसान अली, सच्चाखेड़ा से वेद बिहारी। आइए सुनते हैं गैम्बलर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना गैम्बलर फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे नीरज ने और संगीत से संवारा था इस गीत को एस जी बर्मन ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आ गले लग जा फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। सुनना चाहा है आप सबने कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु सिंह और ऋषभ सिंह। मटोर जिला कैथल से एक खत आया है रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर का। डोंडी लुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है देवशंकर, तामुरिया, आरती, तुषार, डोली, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया ने। बनबदोरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि सारवा। जाखोद राजस्थान से ये खत हमें मिला है शंभु दयाल खटक, विमला, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश खटक, दीपक और पूजा का। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं आ गले लग जा फिल्म से ये गीत।

कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चौधरी। शालर पहल गांव कश्मीर से ये खत आया है पीरजादा मेहरजुद्दीन, केसरदीन और नजमदीन का। भिलाई छत्तीसगढ़ से ये खत हमें लिख भेजा है अशोक श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति ने। बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम, अल्ताफ अंसारी। चौहल्दा से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। दुल्हापुर मुरादाबाद से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज,

काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी सोनी, मोहिनी, कार्तिक और बलबीर सिंह, आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में दर्द फिल्म से गीत। गीत के बोल लिखे हैं नक्श लायलपुरी ने और संगीत से सवारा है इस गीत को खयाम ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने सुना दर्द फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे नक्श लायलपुरी ने, संगीत से सवारा था इस गीत को खयाम ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़। साथ ही आप जुड़े हैं न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में हाथ की सफाई फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

हाथ की सफाई, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना। गुलशन बाबरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म से। गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, डब्वाली हरियाणा से जेके बोकलिया, सुनीता बोकलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकलिया, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन, नया पारा भिरई से बसंत कुमार, सूर्यवंशी, सरोज, ईशर राज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरिंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह, मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी, विकास इंदौरा, प्रियंका, रमन, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल, किंशुक खन्ना और दीपांशी इंदौरा, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक और पंखुरी गुप्ता, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र और रिद्धि गुप्ता। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म से ये गीत।

नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। पत्रोड़ा से ये खत हमें लिख भेजा है मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील ने। पिपरिया कबीर धाम से ये फरमाइश हम तक पहुंची है कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। अकोला महाराष्ट्र से सुशीला मंदूरकर, सदानंद गौरव, निशा रानी नागरिकर। नांदूरा तिरुपति नगर से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश और अनिकेत वसाने। लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर, राजकुमारी पटेल। वाकोड़ी महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वराज जमधाड़े। हिंगोली से शाहजी बोड़के, नंदा। हनगांव आवरी महाराष्ट्र से सुधाकर कामले, संदीप कामले। तालुका पूर्णा देगांव महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात। आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं आँखियों के झरोखों से फिल्म का गीत हेमलता की आवाज़ में। गीत संगीत रविंद्र जैन का है। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।

हेमलता की आवाज़ में आपने सुना अखियों के झरोखों से फिल्म का गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में कभी कभी फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत दिया है खय्याम ने। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

कभी कभी फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में गीत, साहिर के बोल थे, खयाम का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में सिलसिला फिल्म से गीत। जावेद अख्तर के बोलों को संगीत दिया है शिव हरी ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, अलीका डब्बवाले से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत कौर और मनविंदर सिंह पांधा, गोला बाजार बक्सर से शदानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, बठिंडा रोड डब्बवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग, पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया, धामनी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, अमोल, गुलशन, आदेश, किरण डेरे और प्रज्वल, चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल, महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कार्तिक और युवराज, मुक्तसर से बाबू सिंह दीवान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ों में गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के गाए इस गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे।

0: यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।